0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: Glowing Skin, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: चाहे यो नतोती से किस्मत या फैसला कुछ बिजनेसमैन कन ये करे सिस्टम तबाह थे आए तो बहस असेंबली में थेन कुर्ची पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो लंदन में मीडिया से गाल बोल कर चयो है हर कें पंजी राय देने जो हक है सूबन बाबत मौसम नकवी जी पंजी राय है।

ऑफिसर के 21 सेप्टेम्बर ते ज़ाती तौर पेश थियण जो हुकुम। अदालत नारी फहमीदा पिताफ़ीअ खे बारी पिताफ़ी हवाले करण बाबति बि जांच जो हुकुम ॾेई छॾियो। एस एस पी घोटकीअ खे आई जी सां कमु करण जो हुकुम करे छॾियो। कॾहिं को पुलिस ऑफिसर मुलविस हुजे त कानून मूजिबि कार्रवाई कई वञे। कराची यूनिसर आरिफ साकीअ ते ॿियनि खे नामज़द वटि पुछण जो हथ ॿिनि गनमैननि खेसि भाइटे जो निशानो बणायो। गरू वज़ीर वाके जो नोटिस वठंदे एस एस पी ईस्ट खां रिपोर्ट तलब कानून मुताबिक़ कार्रवाई करण जी भेट आहे। पुलिस हर मुमकिन सहकार करे। पार्टी जे गैर पुछाणे जो फ़ैसिलो। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो नोटिस वरितो, ॾेह वापसी ते 5 गैर पुछाणो कयो वेंदो।

0: موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.
1: सिंध के माथे का झूमर
2: GFM 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।
4: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
5: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां। हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट, हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले। पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

अमेरिकी फौज कच्चो तेल खणी वेंदड़ 15 ईरानी बैरी आयल टैंकर सबा करे छड़िया। अमेरिकी सेंट काम ईरानी बैरी जहाजन ते हमले की तस्दीक करे छी। सेंट काम चयो आहे त पासदारन इनकलाब ब ॾींहन दौरान ब भेरा ब्लैक ब्लास्ट मिज़ाइलन सां अमेरिकी जहाजन खे निशानो बणाइण जी कोशिश कई। कार्रवाई ईरानी हमलन जे जवाब में कई वई। ईरानी हमलन में अमरीकी जहाजन ऐं अहलकार महफ़ूज़ रहिया। ईरानी हमलन जे जवाब में हिकु ॿी कार्रवाई में खारक ऐं जास्क में ईरानी ॿ बहरी आयल टैंकर्स खे निशानो बणाए तबाह कयो वियो।

राज अमरीकी एयरबेस के निशानो बढ़ाने की दावा पासदारन इनकलाब जो चवण है अमरीकी अमलन के जवाब में उर्दन में हैंक्स ते बीठल जदीद जंगी जहाज F-35 A-15 के निशानो बनाए वो पासदारन इनकलाब पारा कोयत ए उर्दन के बंदरगाहन के वेझो मौजूद आयल टेंकर के अमले के बे इलाके में निकरी वण की वार्निंग जारी उर्दन जो चवण है ईरान पारा 20 ब्लास्टिक मिजाइल फायर कया 18 मिजाइल फिजा में तबाह कया हुआ 2 मिजाइल आबादी का परे करे हमलन सबब को भी जानी नुकसान ना थे

0: ऐं यमनी हुसैन जा सऊदी शहरनि ते हमला। 73 खां वधीक शहरी ज़ख़्मी। हुसैन सऊदी शहर उबा, खुमेस, मुशैत, निजरान ऐं जाज़ान ते हमला कया। हमलनि जे नतीजे में औरतुनि समेत 73 खां वधीक शहरी ज़ख़्मी थिया। सऊदी इतिहादी फोर्सिस मूजिबि हुसैन खे सऊदी अरब जे शहरनि मथां हमले जो सख़्तु जवाब ॾिनो वेंदो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: महबूबा ने दर्द मैं तो कख गली दा थी वहां।

से आख मत अर्ज करे सा मुह ते दाब न झल्या देखन नाल विसर गया से जेके जोड़ आया सब गल्या उते सूर्य दले रजर बझले सन जित थौ जा हसन जावल्या।

कनाल पैदा वन चाह लगा तू तकी में बदराह मथे भुली भुलंदी इहा गाल तेरी बद चाल वाली कील काल कमीले दे विच हुली हुलंदी अज कल मता पी सुनाई खल लाहई।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है
2: सुनते रहो GFM 90.8।

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: पंजना जी वार निगडनी वही आए और दनक करन पारा ईरान जे वीए बैलिस्टिक मिसाइल मा अणा मिसाइल हवा में तबाह करण जी दावा

सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में शहीद साहबी नसरुल्लाह गडाणी केस में गिरफ़्तार जवाबदार असगर लुंडई ज़मानत वारी दरख़्वास्त रद्द करे छॾी। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच जी ब रुकनी बेंच जस्टिस फैसल कमाल ऐं जस्टिस तस्नीम सुल्ताना महफ़ूज़ कयल फ़ैसिलो ॿुधायो। क़तल केस में बरकत लुंड, असगर लुंड, सरदार खान लुंड संदसि ॿिनि पुटनि समेत छहनि जवाबदारनि खे नामज़द कयो वियो।

0: ऐं कोटड़ीअ में मालगाड़ीअ जा टे गाॾा पटड़ीअ तां लही विया। अप ट्रेन ते गाॾियुनि जी अचु वञ मुअतल। कोटड़ी स्टेशन भरिसां कराची खां यूसुफ वाला कोयलो खणी वेंदड़ मालगाॾी जा टे गाॾा पटड़ीअ तां लही विया। अपग्रेड मुअतल थियण सबबि मालगाॾी खे डाउन ट्रेक ते गुज़ारियो वियो।
1: सोलर ऐं बैटरी
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: पंहिंजो शहर पंहिंजो घर सकरण ऐं सकरण जो आवाज़
4: जीए एफएम 90.8।

पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा

जनी जा थरन में वरथा वेण सहल ऊजे हक भंजल से सचू की सूमरा ओ जय सती सतु न छदियो उहा मारुई मर जाई अचे उमर कोट में जहलोई न लजाई जा सागिल सदाई उहा मारुई

ਰੋਟੀ ਦਾਦਾ ਨੇ ਦੇਹ ਜਾ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਅੱਜ

কথা মুখ ঝামে

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

पासदारनि इनकलाब पारां अमरीकी बीड़नि खे निशानो बणाइण वारी कोशिशुनि बाद कई वई। अमरीकी परडे॒ही वज़ीर मार्क रोबियो बि चयो आहे त तहरान अमरीकी बहिरी बीड़नि खे ॿीहर निशान

में बि 10 खां वधीक ॿेड़नि खे निशानो बणाइण जी दावा। रूसी मीडिया मूजिबि अमरीकी फ़ौज उर्दन जे शहर अल रिज़िक में क़ाइमु अमरीकी अॾे खे निशानो बणायो। अमरीकी बहिरिया जे ॿिनि खे निशानो बणायो वियो। पासदार इनकलाब चयो त उर्दन में अमरीकी अॾे ते कार्रवाईअ दौरान अमरीकी जहाज़नि खे नुक़सानु पहुतो आहे। उर्दन पारां ईरानी मिज़ाइल हमलनि जी तसदीक़ कई आहे।

वज़ीर आज़म ऐं सदारत हेठि फिनांस प्लान 2026-28 बाबति इजलास पंहिंजो घर स्कीम ज़राअत ऐं SMEs में तरक़ी लाइ फिनांसिंग जो जाइज़ो वरितो वियो। शहबाज शरीफ हारनि जे मालियाती वसीलनि ताईं रिसाई बिना रंडक यकीनी बणाइण जी हिदायत कंदे चयो आहे त घटि आमदनीअ वारनि खे सस्ता घर फराहम करणु पहिरीं तरजीह आहे। हुकूमत सां पेट्रोल जे अघनि में घटिताईअ सबबि संजीदा ॻाल्हियूं करे रहिया आहियूं, कुझु तजवीज़ूं बि हुकूमत आॾो रखियूं आहिनि। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे जमायत इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम चयो त धरणनि दौरान हुकूमत राब्तो कयो हो, मामले ते बि अपोज़िशन सां राब्ता कया आहिनि। पेट्रोल सस्तो थियणु घुरिजे। ठटे वेझो गुज़िरियल ॾींहुं हादसे में फोत थियल 6 ॼणनि जी तदफ़ीन इलाइक़े में सोग जी लहर छायल ॻोठु हाजी ईसा पंवर मां ॿिनि औरतुनि समेत 6 ॼणनि जा जनाज़ा खजण वक़्तु हर ख़्याली जनाज़े निमाज़ में इलाइक़े वासियुनि जी वॾे अंग में शिरकत। गुज़िरियल ॾींहुं मीरबार बिरादरीअ जो कुटुंब लाबारो करण बैदि वापसि वञी रहियो त हादसो पेश आयो। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गडाणी केस में गिरफ़्तार जवाबदार असगर लुंड जी ज़मानत वारी दरख़्वास्त रद्द करे छॾी। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच जी ॿ रुकनी बेंच जस्टिस फैसल कमाल, जस्टिस तस्नीम सुल्ताना महफ़ूज़ कयल फ़ैसिलो ॿुधायो।

0: कोटड़ीअ में मालगाड़ीअ जा टे गाॾा पटरीअ तां लही विया। ट्रेन ते गाॾियुनि जी अचु वञु मुअतल। कोटड़ी स्टेशन भरिसां कराचीअ खां यूसुफ वाला कोयलो खणी वेंदड़ मालगाॾी जा टे गाॾा पटरीअ तां लही विया। अप ट्रेक मुअतल थियण सबबि मालगाॾीअ खे डाउन ट्रेक तां गुज़ारियो वियो। ऐं न्यू सईदाबाद वेझो भाई खान वटि पेर तिरकण सबबि डोरे में ॿुॾी वियल राजा गिरगले जो लाश ॻोठणनि पंहिंजी मदद पाण हथु करे वरितो। पुलिस लाश इस्पताल मां ज़रूरी कार्यवाही बाद वारसनि हवाले करे छॾियो। पुलिस गुज़िरियल ॾींहुं मामले ते ॿिनि ॼणनि खे हिरासत में वरितो।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाकी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में टे ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस, साथ ज़िंदगी भर का।
2: थम थम थम, किताबे लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले। पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: सिक्योरिटी फोर्सेस जो बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकन में कार्रवाई 11 दहशतगर्द मारजी वह ISPR मूजिब सिक्योरिटी फोर्सेस खारान वाशिक जिले में गुजे इतलात ऑपरेशन किया. ऑपरेशन दौरान भारतीय सरपरस्ती में कम कदड़ 11 दहशतगर्द मारजी वह खारान में कार्रवाई दौरान रोड बंद करण की कोशिश कदड़ 8 दहशतगर्द मारिया वाया. वाशिक में ऑपरेशन दौरान फायरिंग डे वट दौरान 3 दहशतगर्दन के जनम भेड़ो किया वो. ऑपरेशन दौरान मारजी वाले दहशतगर्दन वटा बारूदी हथियार बारूदी मवाद हथ किया वो. सदर वजीर आजम वफाक वजीर पारा दहशतगर्दन खिलाफ़ कामयाब कार्रवाई से फोर्सिस के भेटा पेश. दहशतगर्दी के मुकमल खात्मे वाले अज़म जो भी वर्जा.

खणी वेंदड़ पंज ईरानी बैरी जहाजन के अमेरिका पारा तबाह करण जी दावा सेंटकॉम ईरानी टैंकर्स हमले जो वीडियोस भी जारी करे छड्यों सेंटकॉम मूजिब ईरानी आयल टैंकर्स खिलाफ कार्रवाई पासदारन इनकलाब पारा अमरीकी बेड़न के निशानो बणाइण वारनि कोशिशुनि बाद कई वई अमरीकी परडेही वज़ीर मार्क रूबियो भी चयो आहे त तेहरान अमरीकी बैरी बेड़न के ॿीहर निशानो बणाइण जी कोशिश कई त ईरान जा समूरा आयल टैंकर तबाह कया वेंदा आयल टैंकर से अमरीकी हमलन बाद ईरान जो बे अमरीकी हथफंद जवाबी वार उर्दन में अमरीकी अडन के निशानो बणाए वो आबनेवरंस में भी ॾह खां वधीक ॿेड़नि खे निशानो बणाइण जी दावा रूसी मीडिया मूजिबि ईरानी फ़ौज उर्दन जे शहर अल रिज़क में क़ाइमु अमरीकी अॾे खे निशानो बणायो अमरीकी बैरिया जे ॿिनि खे बि निशानो बणायो वियो पासदार इनकलाब चयो त उर्दन में अमरीकी अॾे ते कार्रवाई दौरान अमरीकी जहाज़नि खे बि वॾो नुक़सानु पहुतो उर्दन पारां ईरानी मिज़ाइल हमलनि जी बि तसदीक़ कई वई वज़ीर आज़म जी सदारत हेठि फिनांस प्लान 2026-28 बाबति इजलास पंहिंजो घर स्कीम ज़रात ऐं एस एम एस में तरक़ी लाइ फिनांसिंग जो जाइज़ो वरितो वियो शहबाज़ शरीफ हारन जे मालियाती वसीलनि ताईं रसाईअ बिना रंडक यकीनी बणाइण जी हिदायत कंदे चयो त घटि आमदनी वारनि खे सस्ता घर फराहम करणु पहिरीं तरजीह आहे हुकूमत सां पेट्रोल जे अघनि में घटिताईअ बाबति संजीदा ॻाल्हियूं करे रहिया आहियूं कुझु तजवीज़ूं बि हुकूमत आॾो रखियूं आहिनि कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे जमायत इस्लामीअ जे अमीर हाफिज़ नईम चयो त धरणनि दौरान हुकूमत राब्तो कयो मामले ते असां बि अपोज़िशन सां राब्ता कया आहिनि पेट्रोल सस्तो थियणु घुरिजे मीर रज़ा केस जी जांच कंदड़ अदालती कमीशन घरू वज़ीर ज़िया लंजार जी तलबीअ जो वक़्तु तब्दील करे छॾियो घरू वज़ीर ज़िया लंजार खे 10 सेप्टेम्बर 11 वॻे पेश थियण जी हिदायत कई कमीशन पंहिंजे हुकुमनामे में चयो त घरू वज़ीर वाज़ करे त वारसनि खे सुवाल पुछण जो हक़ आहे या न रावलपिंडीअ जे जुडिशल कॉम्प्लेक्स जे पारकमा नाले वारे कानूनदान सनाला जो लाश हथ पुलिस लाश तहवील में वठी मामले जी जांच शुरू करे छॾी गढ़ी यासीन वासी नौजवान सखर में हथियारबंदनि हथां क़तल लाश इस्पताल मुंतकिल सखर बाईपास वटि हथियारबंदनि नौजवान मुनीर मंद पुटु गुल हसन जाफरी खे क़तल कयो वाक़े बाद हथियारबंद फरार थी विया इतलाह ते पुलिस पहुची लाश इस्पताल मुंतकिल कयो पुलिस जो चवणु आहे त वाक़े जा कारण मालूम न थी सघिया आहिनि वधीक जांच कई पई वञे ठटे वेझो गुज़िरियल ॾींहुं हादसे में फोथियल 6 ॼणनि जी तदफ़ीन इलाइक़े में सोग जी लहर 6 अलॻि ॻोठु हाजी ईसा पवरमा ॿिनि औरतुनि समेत 6 ॼणनि जा जनाज़ा खजण वक़्तु हर अखि हली रही जनाज़े निमाज़ में इलाइक़े वासियुनि जे वॾे अंग में शिरकत गुज़िरियल ॾींहुं मीरबार बिरादरीअ जो कुटुंब लाबारो करण बाद वापसि वञी रहियो त हादसो पेश आयो कोटड़ीअ में मालगाड़ीअ जा 3 गाॾा पटड़ीअ तां लही विया ट्रेन ते गाॾियुनि जी अचु वञु मुअतल कोटड़ी स्टेशन भरिसां कराचीअ खां यूसुफ वाला कोयलो खणी वेंदड़ गाॾी जा 3 गाॾा पटड़ीअ तां लही विया अप ट्रेक मुअतल थियण सबबि मालगाॾीअ खे डाउन ट्रेक तां गुज़ारियो वियो न्यू सईदाबाद वेझो ॻोठु भाई खान वटि पेर तिरकण सबबि ढोरे में ॿुॾी वियल राजा जो लाश ॻोठणनि पंहिंजी मदद पाण हथु करे वरितो पुलिस लाश इस्पताल मां ज़रूरी कार्रवाई बाद वारसनि हवाले करे छॾियो पुलिस गुज़िरियल ॾींहुं मामले ते ॿिनि ॼणनि खे हिरासत में बि वरितो हो

ऐं सिंध जे क्लासिकल रागी उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जे विछोड़े खे छाहेतालीह वरिया वियामी विया। ख़ानदान जे फर्दनि शागिर्दनि ऐं मदान जी टंडरी आदम में उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जे मज़ार ते हाज़िरी। गुलनि जी चादर चाढ़े भेटा पेश कई वई। उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जा ॻायल गीत अॼु बि

0: हर जंग मशहूर बनेला।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है एनपीएस 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: मेरी
1: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवांजी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीहन जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान बिल्कुल आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से बिल्कुल दी आपके सदर आपके साथ मौजूद है मेरे साथ कौन है मुझे बताते जाएंगे अपने होने का एहसास दिलाइए जनाब आप जिंदा है मुझे पता होना चाहिए अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं शामले प्रोग्राम होना चाहते हैं तो क्या तरीके कार फॉलो करेंगे सब कुछ बताएंगे लेकिन आज के प्रोग्राम का टॉपिक क्या होने वाला है सबसे पहले ये बता देते हैं तो बिल्कुल जी अगर आज के प्रोग्राम के टॉपिक की बात करी जाए तो आज मेरा आप लोगों से जो सवाल होने वाला है ना वो बिल्कुल ये होने वाला है कि वैसे हमें ऐसा लगता है कि हमें अगर फ्यूचर दिखाया जाए या फिर हमें अगर फ्यूचर में जाना पड़े तो हम अपने लिए ये चीज़ देखेंगे कि हमने अपने फ्यूचर में जाकर क्या किया है कई मरतबा ये वाला सीन हो जाता है कि हम फ्यूचर में जाकर ना खुद को देख नहीं सकते ये चीज़ वैसे इसके ऊपर काम चल रहा है कि हाँ भाई लोग फ्यूचर में जाकर देख सकते हैं कि उनके साथ क्या हो सकता है या फिर वो फ्यूचर में जाकर क्या कर सकते हैं लेकिन आज मेरा आप लोगों से सवाल कुछ इस तरह होगा कि आपने मुझे बताना है फर्ज कर लेंगे अगर आप लोगों को एक आधा घंटा मिल जाएगा भाई आप अपने फ्यूचर में जाएं और आपको आधा घंटा मिल जाएगा फ्यूचर में जाकर अपने लिए देखें कि आप फ्यूचर में जाकर क्या कर रहे हैं आप क्या बन चुके हैं आपने क्या किया है अगर आधा घंटा जाकर आप देख सकते तो आप अपने लिए क्या जाके देखते हाँ जी हमें ये लगता है कुछ लोगों को लगता है कि भाई हम जाके देखना चाहेंगे कि हम अपने आगे जाकर फ्यूचर में हमने क्या किया है कौन सा हम काम कर रहे हैं क्या जॉब कर रहे हैं पढ़ाई की नहीं की ये चीज़ वो चीज़ तो इस तरह आप मुझे बताएं कि अगर आपको मौका मिले फ्यूचर में जाकर अपने लिए आधा घंटा देखने के लिए कि भाई आप फ्यूचर में जाएं और आप आधा घंटा अपना फ्यूचर जो है ना वो देकर आए तो आप क्या देखना पसंद करेंगे फ्यूचर में जाकर उसके लिए अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तरीकेकार बहुत ज्यादा आसान है ऐसा कीजिए अपना सेल फोन उठाइए मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए अपना नाम लिखिए पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर अगर आप हमें फेसबुक पर सुनना चाहते हैं फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जीए लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है बिल्कुल ही तो जीए लाड़काना FM 88.8 के पेज के ऊपर आप जब आएंगे तो वहां पर आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है जिसे आप लाइक करेंगे कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे हाँ जी ऐसा वाला सीन है कि आप लोगों के पैनल के मैसेजेस शामले प्रोग्राम किए जाते हैं और जो लाड़काना वाली पोस्ट है ना उसके ऊपर आप आकर कॉमेंट कीजिए तो आपके कॉमेंट शामले प्रोग्राम रखे जाएंगे ठीक है अदरवाइज बाकी जो नूरियाबाद की पोस्ट के ऊपर मौजूद है तो उनसे भी गुजारिश करूंगी कि भाई आप आकर लाड़काना के पेज के ऊपर हमें ज्वाइन कीजिए बाकी जो नूरियाबाद वाले लिसनर्स हैं कल तो मुझे लग रहा था कि कोई भी नूरियाबाद का बंदा मुझे नजर नहीं आया था प्रोग्राम के अंदर आज देखेंगे कि आज शामले प्रोग्राम होते हैं या नहीं होते हैं जल्दी से हमें ज्वाइन कीजिए और अपनी खामोशी को तोड़ लीजिए और आप ही बताइए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करने वाले हैं या फिर पहले से कर रहे हैं तो ये तरीके कार हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के और जल्दी से टॉपिक को फॉलो कीजिए अपने होने का एहसास दिलाते जाइए और साथ ही साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते जाइए तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप भी चाहते हैं कि भाई हमारे करीबी जनरल स्टोर्स पर मिलनी चाहिए हमारे करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल होनी चाहिए तो जल्दी से आपको जो नंबर बता रही हूं ना

0: के ऊपर रब्ता कीजिए। रब्ता करने के फौरन बाद ही ये हो जाता है कि भाई आपके करीबी जनरल स्टोर्स के ऊपर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल करा दी जाएगी। कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं पहुंची है, वो ये चाहते कि भाई हम भी लगाना चाहते, हम भी इस्तेमाल करना चाहते। असां केड़ो डो कयो सी भला। तो बिल्कुल तव्हां डो ना कयो, तव्हां बस इन नंबर ते राबतो करे वठो। ऐं नंबर ते जॾहिं तव्हां राबतो करे वठंदा ना, पोइ जल्दी तव्हांजे करीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराई वेंदी डी स्किन ब्यूटी क्रीम। ऐं नंबर आहे जनाब, जल्दी नोट करे वठो, 03-12-50-25-907-5050-907. ऐं ॿियो नंबर आहे 03-27-38-43-09 3-74-84-309। ही नंबर साइन जेके तव्हां डायल करे पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे अवेलेबल कराए सघो था। जल्दी जल्दी पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे अवेलेबल करायो। बाकी खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके तव्हां पूरे प्रोग्राम में कयूं वेंदियूं, छो त तव्हांजो असांजो साथ ख़बर आहे त पूरे 3 बजे ताईं आहे। सो बिल्कुल तव्हां असांखे ज्वाइन बि कंदा वञो पिया, तव्हांजा फीडबैक्स बि आहिनि, ऐं ज्यादा खां ज्यादा तव्हां पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कंदा हलो, ठीकु आहे। जॾहिं तव्हां असांजी पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कंदा आहियो न, त छा थींदो आहे बाबा, हिन सां इहो फ़र्क़ु पवंदो आहे त असांजी जेका पोस्ट आहे न, उहा खोड़ सारे माण्हुनि ताईं पहुची वेंदी आहे। ऐं खोड़ सारे माण्हुनि खे असां इहो ॿुधाए सघंदा आहियूं त बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां बि लॻाए सघो था। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जा केतिरा सारा फ़ाइदा आहिनि सभु कुझु ॿुधायां थी। पर हिते असांखे जॉइन कयो आहे फरवा गुल खे, थी असलाम अलैकुम, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, अल्लाह ब्लेस यू विद द बेस्ट विशेस, टेक केयर। हाय आपी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ जी, आप बताएं कैसी हैं? बरकत रमदानी जमाली बलोच में ज्वाइन कर चुके हैं, जाफराबाद बलोचिस्तान से भाईजान को वेलकम कहते हैं। अखलाक बलोच हमारे साथ मौजूद, कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, हेलो। अच्छा फहीम शेख कहते हैं सलाम अलैहिस्सलाम मदद, वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं अदा चाहला सफा चाक स्लेट कलम शो तो सफा भलो आहे प्ले। अच्छा ठीक है, तव्हां गानो लिखियो आहे, गानो हलायूं था। और फरवा कहती हैं आपे ही पोइट्री है, कभी रास्ते बदल गए कभी इरादे बदल गए, हम ना बदले मगर तेरे वादे बदल गए, मोहब्बत के अंधेरे में पत्थर पिघल गए, गेरों से क्या गिला जब अपने बदल गए। आई ली और कहती हैं गाने की रिक्वेस्ट है, मैं कोशिश क्या थी बिल्कुल तांज लाए गानो हलाइना सी। और हमारे साथ ही जी अखलाक भाई कहते हैं कि डी स्किन कमाल की क्रीम है। हाँ जी बिल्कुल, डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बहुत सारे फायदे। और यहाँ पर स्मार्ट किशोर भाई कहते हैं सलाम अदा स्मार्ट आयोवा रिली विशाय रिली ते वेंदा हलड़े। चलो चलो तव्हांखे चवंदा भली करे आया। और गुलाम फरीद बलोच कहते हैं जिंदगी से नजर मिलाओ कभी, हार के बाद मुस्कुराओ कभी, तरके उल्फत के बाद उम्मीद वफा, रेत पर चल सके है नाव कभी, अब जफा के सराहते बेकार, बात से फिर सका है घाव कभी, शाक से मोझे गुल थमी है क्यों, हाथ से रुक सका बहाव कभी, अंधे जहनों से सोचने वालों हरफ में रोशनी मिलाओ कभी, बारिशें क्या जमीन के दुख बांटे, आंसुओं से बुझा लाओ कभी, अपनी स्पेन की खबर रखना कश्तियां तो मगर चलाओ कभी। गुलाम फरीद जागरानी क्या बात है, आते साथ इतनी लंबी शायरी भेज दी ढा करके मार दी। अच्छा उनके अलावा फहीम भाई कहते हैं दादा डी स्किन ब्यूटी क्रीम लाजवाब आए, बिल्कुल जी जेके डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर पाया हुए बिल्कुल यही चवन पाया। एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर तमाम भी इस्तेमाल करना चाहो था तो जल्दी जल्दी पाने करीबी जनरल स्टोर से भजंदा वो उतना वी मोटी अचो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करें बुधाए मुख्य तो तमाम भी इस्तेमाल कई है। अच्छा वकास अली कहते हैं असलाम अलैकुम अलैहिस्सलाम मदर, प्लीज प्ले मास्टर मंजूर अच्छी डे आथत उदास दिल के डेडिकेट टू मीर मुर्तजा। अच्छा मैं कोशिश कयां थी तव्हां सभिनी जे गाननि जूं फरमाइशूं हलाईंदासीं। और चाचा खाली जुड़ी जो हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं चाचा आपको भी, मैं ठीक हूँ, आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है। कहते हैं बेटा सिद्रा डी स्किन ब्यूटी क्रीम हम भी लगाना चाहते हैं, असा बिल्कुल तव्हां वठो नी, तव्हांखे कंहिं चलो आहे तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सघो था बाबा। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए, जेको नंबर तव्हांखे ॿुधायो न नंबर ते तव्हां राबितो करे वठो। ऐं तव्हां टॉपिक खे ज़रा ॾिसी वठो, टॉपिक मां तव्हांखां पुछो आहे, अगरि बाबा इंसान खे चांस मिलंदो आहे न, ख़ैर इंसान खे त खोड़ सारा चांस मिलंदा आहिनि, पर इंसान जेको आहे न पंहिंजे हथनि सां काफ़ी सारी चीज़ूं विञाए छॾींदो आहे, हू हिकिड़ो पहाको न हथनि सां विञाए वरी पेरनि सां ॻोल्हींदा आहिनि, इहे हरकतूं न कंदा कयो। अगरि तव्हां बि चाहियो था बाबा अगर तुम खूबसूरत हो तो बिल्कुल तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे खूबसूरत ही सगो था टाइम भी थियो वाही त शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जी तरफ हलियो वने वनी वरी पो जल्दी मोटी मींदम तां दिलजाए न कयो दिलजाए कयो बाबा दिल न लायो आई जल्दी जल्दी मोटी चूं था एकड़ा नंडड़ा सफा कमर्शियल ब्रेक आए ओही वनी ओही मोटू था सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरतियां हासिल कीजिए
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
2: ओवर टू कमर्शियल
3: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
4: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी غذائی اجزاء मिले इसके हर दाने में तीनों اجزاء की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा तीन की ताकत मिले फसल भरपूर खिले
5: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है
6: सुनते रहो GFM 90.8

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मिरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली 92 नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में यहाँ पर आप लोगों के साथ बातें की जा रही है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सही जगह पर मौजूद है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में जरा सा आप लोगों को बताते हैं, जरा सा क्या बल्कि थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा सा आपको बताते हैं कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करने लगेंगे तो आपके जहनों में ये चीजें तो होनी ही चाहिए कि हम डी स्किन ब्यूटी क्रीम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता, बस दुकानदार कोई भी प्रोडक्ट पकड़ा देता है या फिर वो अगर देखते हैं कि भाई फला इंसान को इस प्रोडक्ट से अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो हम लगाएंगे तो हमें भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो ऐसा कोई सीन नहीं होता। अगर कोई भी प्रोडक्ट किसी और के ऊपर अच्छा वर्क कर रहा है तो ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं होती कि वो आपकी स्किन के ऊपर भी बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा जैसे वो उसकी स्किन के ऊपर कर रहा है। क्योंकि हर एक इंसान की स्किन टाइप अलग अलग होती है। अगर आप अपनी स्किन टाइप नहीं जानते हैं, आपको नहीं पता कि हमारी स्किन टाइप क्या है, तो आप थोड़ा सा जो है ना वो हर एक प्रोडक्ट जो है ना उसे अवॉइड किया करें। ऐसा नहीं कि बस कोई भी प्रोडक्ट बता दिया उसके ऊपर आपने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। आप ऐसा किया करें, पहले जान लीजिए, समझ लीजिए कि जो भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करने वाले हैं, जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको आप क्यों इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में। तो यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है, सबसे पहली बात तो ये है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। और ऑल स्किन टाइप के लिए क्यों है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है और मेडिकेटेड फार्मूला होने की वजह से डी स्किन ब्यूटी क्रीम को हर स्किन के ऊपर आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिसके अंदर विटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन है, और ये जो चीजें होती है ना जैसे विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन, ये पाकिस्तान में 2 से 3 प्रोडक्ट्स है जिनके अंदर पाई जा रही है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो भाई क्या बात है, आपकी स्किन को ऐसे चमका देगी। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर अल्फा आर्बुटिन है, कोजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें भी आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली। वैसे कहते ना जो अच्छा महंगे महंगे प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे जब आप देखते हैं ना कि बहुत सारी खवातीन जब बहुत महंगे महंगे फेशियल करा के आती हैं और फेशियल कराने के बाद जो उनके चेहरे पर ऐसे आपको लगता है ना कि बहुत ज्यादा वाला निखार आ चुका है, तो जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो ये 2-in-1 क्रीम है, यानी कि आपको इस तरह का निखार देती है कि जैसे आपने फेशियल किया हुआ हो। ये एक नाइट क्रीम है जैसे आपका टाइम भी बच जाता है, आपके पैसे भी बच जाते हैं और आपको बहुत से भी बहुत अच्छा वाला निखार भी मिल जाता है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बहुत ज्यादा वाले फायदे हैं, ये बात तो बिल्कुल आप सभी जानते हैं कि खूबसूरती की बात हो और स्किन केयर को नजरअंदाज कर देना ये जो होता है ना ये चीज हमसे बिल्कुल भी नहीं हो पाती। और ये तो हो ही नहीं सकता कि भाई आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर आपको रिजल्ट ना मिले। इतना अच्छा इतना कमाल का आपको रिजल्ट मिलने वाला है कि आजकल हर कोई चाहता है ना कि जैसे भाई उनकी जल्द जो है वो साफ सुथरी हो, नरम हो, फ्रेश हो, बेदाग हो, गोरी हो। लेकिन उसके लिए ये भी हो जाता है कि भाई आप समझ नहीं पाते कि हमने कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जैसे पहले ही मैंने आपको बताया कि ये मेडिकेटेड फार्मूला है, डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया गया है और ये हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल हो सकता है। तो बिल्कुल जी आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अपने रोजमर्रा स्किन के रूटीन का हिस्सा बना लीजिए। चाहे आप रात को सोने जाएं तो कुछ ही जो पल होते हैं ना, ऐसा होता है कि भाई मुझे ये लगता है कि कुछ लोगों के पास चलें, अगर आपके पास दिन में कोई भी टाइम नहीं है तो शाम में रात में आप थोड़ा जो ना 4 से 5 मिनट अपने लिए निकाल लीजिए। 4 से 5 मिनट मुझे लगता है कि ये इनफ टाइम होता है अपने स्किन को अच्छे से वॉश करने के लिए और एक ब्यूटीफुल सी क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई करने के लिए। ये 4 से 5 मिनट बहुत काफी होंगे। तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। आपके पास इतना प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट मौजूद है जिसका इस्तेमाल करके आप ना सिर्फ खूबसूरती हासिल कर सकते हैं बल्कि अपनी खूबसूरती की हिफाजत भी कर सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप खवातीन हैं, मर्द हजरात हैं, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। अपनी स्किन को जरा पहचानिए, उसे क्या चाहिए। आपकी स्किन को जैसे आपकी बॉडी को खाने पीने की जरूरत होती है वैसे ही आपकी स्किन को भी भाई प्रोडक्ट की और अच्छे प्रोडक्ट की नीड होती है। तो बिल्कुल वैसे ही अपनी स्किन के ऊपर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि भाई बिल्कुल सेफ है और इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने वाले लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर के ममालकात में भी यूज की जा रही है। तो
जनाब इस्तेमाल करके देखिएगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम और खूबसूरत हो जाइए, क्योंकि ये आप डिजर्व करते हैं। वैसे डी स्किन का फेस वॉश भी मार्केट में अवेलेबल है, कहीं कहीं पर मिल रहा है, वैसे हर जगह पर अवेलेबल अभी तक नहीं हुआ। तो आप ऐसा कीजिए कि आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराइए, चले जाइए अपने करीबी जनरल स्टोर से, वहां से मालूमात लीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल हो चुकी है या फिर नहीं, क्योंकि अवेलेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जहां पर रहते हैं वहीं पर आपके लिए ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए। बिल्कुल जी, चाहे आप हमें सखर से सुन रहे हैं, मोरो से, मिरपुर खास से, मटियारी से, सखरण से, मेहरापुर से, या फिर 92 नूरियाबाद से, या फिर लाड़काना की समाते हैं, तो हर जगह आपके लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल होनी चाहिए। बस आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर चले जाएं और वहां से नाम लेकर तलब करें। तो जल्दी जल्दी से इस्तेमाल करते जाइए, खूबसूरती को जरा पहचानिए, आप कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और वो आपको किस तरह के रिजल्ट दे रहे हैं, ये चीज मैटर नहीं करती, बल्कि आप इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम, क्योंकि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिलेगी वो वाली खूबसूरती जो कि आप हमेशा से हासिल करना चाहते थे। ओके जी, मर्द हसरात खवातीन हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, अपनी खूबसूरती का ख्याल रखते जा रहे हैं, और जल्दी जल्दी से हमें भी बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में जानते हैं और पहले से इस्तेमाल करें, क्योंकि भाई आप अच्छे से जानते हैं, पहले भी 3 महीने प्रोग्राम करके जा चुकी हूं मैं दोबारा से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो पहले से ही डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे होंगे। ओके जी, सो जल्दी से मेरे साथ शेयर किया करें, वैसे भी कहती हूं शेयरिंग इज केयरिंग होती है, और फेसबुक वाले जितने भी लोग हमारे साथ हैं जी, पोस्ट को लाइक और शेयर किया करें, कंजूसियां किस बात की। और मैंने जो आज आप लोगों से सवाल पूछा है कि आप मुझे बताएं, अगर आप फर्ज कर लीजिए आपको ऐसा मतलब चांस मिल जाए, फ्यूचर में जाने का आपको मौका मिल रहा हो, सिर्फ आधे घंटे के लिए आप अपने फ्यूचर में जाएं और देखें कि भाई आपकी क्या हालत है, आपके हालात अच्छे हो चुके हैं या बुरे हो चुके हैं, तो आप जाकर देखेंगे फ्यूचर में। आप मुझे बताएं, जब आप अपने फ्यूचर में जाएं तो अपने लिए क्या देखना पसंद करेंगे, क्या ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि ये मैं फ्यूचर में जाकर अपने लिए देखना चाहूंगा या देखना चाहूंगी। जल्दी से मुझे बताइए, हमारे प्रोग्राम का ऐसा बनते जाइए और मुझे 888 और फेसबुक पर ज्वाइन करते जाइए। ओके जी, आपके लिए गाने लगाते हैं बहुत अच्छी अच्छी जो हमारी लिस्ट में मौजूद है, और आप लोगों से बातें करते हैं, आपके मैसेजेस जो कि काफी तादाद में जमा हो चुके हैं, चाहे वो कमेंट्स हो चाहे वो पैनल पर हो, तो बिल्कुल आपके मैसेजेस की जान भी आते हैं। आपका हमारे साथ 3 बजे तक का होगा, आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो।

हमारे साथ ही यहाँ पर गुलाम फरीद बलोच लिखती है, अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? तबीयत ठीक ठाक है और बाकी सारे लोग ठीक है हो? अच्छा, सब लोगों से पूछ रहे हैं, सही है जी, कहती हैं आपका प्रोग्राम ब्यूटीफुल है, थैंक यू वेरी मच जी। और फहीम भाई लिखते हैं कि मेरा नाम तक जो ना ले सका, जो मुझे करार ना दे सका, जिसे अख्तियार तो था मगर मुझे अपना प्यार ना दे सका, वही शख्स मेरी तलाश से, वही दर्द मेरी हयात है। वाह वाह वाह वाह वाह। अच्छा, किशोर भाई लिखते हैं कि टॉपिक, अगर मुझे फ्यूचर में वञण जो मौको मिले तो आऊं सब का पहरी ही दिसा हां, तो तू अन्या घणा दफा दर बंद कंदी। बाबा यसा जे समय त गाल होंदी ना है ना, असा पाण एकड़ा छा चवा हाणे नौकर मानू आयो नौकरी कंदा आयो सो असा जी सगोता

अच्छा फहीम भाई कहते हैं कि अबाउट टॉपिक फ्यूचर में किसी का मोहताज नहीं होना पसंद करूंगा. अच्छा वो देखेंगे. सही है जी, सही है. और उनखा अलावा चाचा तव्हांजो गानो कल 5 बजे वारे प्रोग्राम में जो ॿुधोसीं. हाँ हाँ एतिरे में विसरी वियो. अखलाक भाई कहती अॼु मां 2 गिलास लस्सी जा पी वॾो पाण सां. हाँ भाई थोड़ी भी लस्सी पी लेना, नींद आती मुझे तो बहुत आती है वाके. और फरवा की थी आप ही टॉपिक में आपसे मिलने का पूरा एफर्ट करूंगी. अच्छा और मुगल उमरानी हमें सुन रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया. नजीर खोस हमें सुन रहे हैं बलूचिस्तान से और कहते हैं अच्छा ठीक है बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं. और हिदायतुल्लाह कहते हैं कि लगा के दीद के जो आस बैठा है पहने गम का लिबास बैठा है, किसी की तवज्जा नहीं उसकी जानिब वो जो एक शख्स उदास बैठा है. कैसी हो? बहुत खूबसूरत, आप बताएं कैसे. जी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके खूबसूरत बनना चाहते हैं? नहीं ना मत कीजिएगा क्योंकि न जेका ना निभागो कदम तमाम जी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो आई जी स्किन ब्यूटी क्रीम तमाम खूबसूरती जला सफा घणी फायदेमंद साबित थींदी आई तमाम दुआ दींदा मके त वाह वाह सिदरा वाह वाह वाह जो प्रोडक्ट बुधायो थई सो दैट जी स्किन ब्यूटी क्रीम एक एड़ी क्रीम आहे जेका मेडिकेटेड फार्मूलो आहे. मेडिकेटेड फार्मूलो माना हिन खे जेके स्किन वारा डॉक्टर हूंदा आहिनि उन्हनि तयार कयो आहे, उन्हनि जो फार्मूलो आहे. सो तव्हां बेफिक्र थी करे जी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सघो था, चाहे तव्हांजी स्किन सेंसिटिविटी छो न हुजे.

0: पोस्ट के लाइक एंड शेयर करना। हेलो, अच्छा जेड एस हमारे साथ है फ्रॉम मोरो, कहते हैं सलाम अलैकुम, आप और तमाम सुनने वालों को सलाम, शो नाइस है प्लीज प्ले तू
1: सब सोहना गुलेड़ा।
0: अच्छा अच्छा मैं समझी, वैसे शमन मिटाली जी गाने जी फरमाइश का यही तो शमन नची हुए ओपेरी। चलो डिसन था। और नूरियाबाद से नेक मोहम्मद पालारी हमारे साथ है, अदि आपका शो सुन रहा हूँ, जबरदस्त आवाज और अंदाज, क्या ही बात है कसम से, क्या बात है जी। एक मुझे मैसेज मिल गया नूरियाबाद से, मैं सोच रही थी कि वैसे तो पहले भी मेरा प्रोग्राम नूरियाबाद में कनेक्ट हुआ था कुछ टाइम पहले, तो नूरियाबाद से मुझे अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता था, तो कल का दिन जो था वो पहला दिन था, मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई पहले दिन लोगों को पता नहीं होगा, और दूसरा दिन एक मैसेज मिला, देखते हैं आगे क्या सूरत हाल होने वाली है। तो मुझे अच्छा खासा आप सब लोगों से रिस्पांस मिलना चाहिए। और ये भी आप बताएं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप कब इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये जो इतनी तारीफें कर रही है बिलावजह नहीं कर रही हूँ, इसके बहुत ज्यादा फायदे आपको मिलने वाले हैं जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करेंगे। तो नूरियाबाद हो, कश्मीर हो, कराची हो, कहीं पर भी आप चले जाएं, वहां पर आपके लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल होनी चाहिए। तो बस जो नंबर आपको बता रही हूँ प्रोग्राम में, उसके ऊपर रब्ता करते रहिए और अवेलेबल कराते रहिए।

ओके जी, गुलशेर बाबर एंड मुजम्मिल बाबर हमारे साथ है विलेज अल्लाह बड़ायो बाबर से। भाईजान को वेलकम कहा जाता है, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ है। और हमारे साथ ही भाऊ, हमने भी आपका नाम सुना है यहाँ कराची में, जगह जगह आपके मत करें, इतनी लंबी लंबी नहीं छोड़नी थी, इधर सिद्रा बॉस लिखा पड़ा है, मजा कर रहा हूँ भाऊ। हाँ जी, मुझे पता चल गया था। और वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई को वेलकम कहते हैं। लेकिन टॉपिक भाऊ, मैं ये देखूंगा कि बच्चे कितने हुए हैं मुझे, और कुछ कुछ नहीं। अच्छा, और कुछ नहीं, सही है। वैसे तो हमारी हाँ, ये भी वैसे अच्छी बात है, देखेंगे बच्चे कितने हुए हैं, सही है। और हाँ बिल्कुल, ख्याल रखा करिए, अच्छी बात है। और वैसे डी स्किन ब्यूटी क्रीम का भी इस्तेमाल करिए, अच्छी बात होगी। हमारे प्यारे जयपाल भाई कहते हैं कि मोहब्बत लिबास नहीं जो रोज बदला जाए, मोहब्बत कफन है जो पहनकर उतारा नहीं जाता। जनाब बिल्कुल आप सही कह रहे, तांची गाल खा एगरी आई हूँ। हाँ जी, गुल खणी भी हो पर गॾु गॾु डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी खणी बीहो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी हाणे तव्हां सभिनी खे ॾस ॾियो बाबा, त डी स्किन ब्यूटी क्रीम मार्केट में अवेलेबल आहे। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां वेंदा त तव्हांखे आराम सां मिली वेंदी। डी स्किन ब्यूटी क्रीम सवा मुनासिब क़ीमतनि में तव्हांखे मिली रही आहे। वञो बाबा, थोरो पाण ते ख़र्च कयो, ईअं न कयो सवा पाण खे छॾे ॾींदा आहियो तव्हां। ईअं न कयो, पंहिंजो ख़्यालु रखो ऐं पंहिंजे ख़ूबसूरती जो ख़्यालु रखो, छो त तव्हां पाण ख़ूबसूरत हूंदा, तव्हांजी स्किन ब्यूटीफुल हूंदी त तव्हांखे हर चीज़ सुठी लॻंदी आहे। अगरि हिकिड़ो बि एक नी अची वेंदो आहे न फेस ते, मतिलब मां पंहिंजी हिकिड़ी ॻाल्हि थी ॿुधायांव, हिकिड़ो बि अगरि एक नी अची वेंदो आहे न त मतिलब मूंखे लॻंदो आहे बाबा हाणे इहो एक नी खे ॾाढी हलंदो, हूअं थींदो। एक नी बि अगरि तव्हांजे चहिरे ते हुजनि न, उहे बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी वजह सां ख़तम थी वेंदा आहिनि। सो हिकिड़ो बि एक नी अगरि तव्हांजे चहिरे ते अची वेंदो त तव्हां डिस्टर्ब थी वेंदा आहियो। सो बिल्कुल इन चीज़ खे सफ़ा बाय बाय करे छॾियो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो। हीउ मेडिकेटेड फार्मूलो आहे, तव्हांजी स्किन खे सफ़ा ईअं सफ़ा चिकनो बणाए छॾींदो। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम मर्द मायूं सभी लॻाए सघनि था।

0: कर।
1: हाँ जी, क्या बात है, बहुत प्यारा गाना एंजॉय कर रहे हो। यहाँ पर अखलाक भाई कहते हैं कि अंसर चांद पे पहुँचने वाला था, अचानक जहाज का टायर पंचर हो गया। नींद से जा गए होंगे मुझे ये लग रहा है। और जी हमारे साथ है यहाँ पर फहीम भाई, लिखते हैं कि भाव रेशम गली में दुकानदार ऐसे हैं, जो भी प्रोडक्ट उनसे मांगो वो क्रीम उनके पास ना हो तो पांच और क्रीमें दिखा देते हैं, कहते हैं ये उससे भी ज्यादा अच्छी। हाँ बिल्कुल, असम रेशम गली में ना असांगे खबर आए तरी ने तांगे नसीनिया ना, तो बाबा इन चीजों का थोड़ो बच्चो। अगर दुकानदार तवा सा भी ठगी करे तो उनके चोस बाबा सीधी गाल कर न थी स्किन ब्यूटी क्रीम तो घुराए वो बाबा, बाकी असाके गुमराह न डाटा गुमराह थे लायो। तो स्किन ब्यूटी क्रीम वो बाबा इस्तेमाल कर, खूबसूरती जो ख्याल रखो।

0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पोस्ट को लाइक शेयर कर रहे हैं। नहीं अच्छा, ये हमारे साथ है मीरू खान चौक से अली अकबर बिरोही भाई, शफन अली, मीर बहर, अब्दुल खालिक सियाल, सब भाइयों को वेलकम कहा जाता है, बहुत शुक्रिया। और एम अली मोरो सिटी से कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, सदरा मुस्कान डी स्किन की क्या बात है, हदीका ज्ञानी का सॉन्ग तो सुनाए, हाजिर हाजिर बिल्कुल बुधरायूं था। और हमारे साथ है जयपाल भाई, कहते हैं कि मेरी दोस्ती का बाग छोटा है मगर सारे फूल गुलाब रखता हूँ, दोस्त कम जरूर है मगर जो रखता हूँ लाजवाब रखता हूँ, बिल्कुल ये हुजन गुर्जर।
1: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN.
4: सिक्योरिटी फोर्सेस जो बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकन में कार्रवाई 11 दहशतगर्द मार आईएसपीआर मूजिब सिक्योरिटी फोर्सेस पारा खारान वाशिक जिलन में गुजे इतलात ऑपरेशन कयो। ऑपरेशन दौरान भारतीय सरपरस्ती में कम कंदड़ 11 दहशतगर्द मार वया। खारान में कार्रवाई दौरान रोड बंद करण की कोशिश कंदड़ 8 दहशतगर्द मारिया वया। वाशिक में ऑपरेशन दौरान फायरिंग डेवट दौरान 3 दहशतगर्दन के जनम भेड़ो कयो वयो। ऑपरेशन दौरान मारजी वल दहशतगर्दन वटां बारूदी हथियार ए बारूदी मवाद हथ कयो वयो। सदर वजीर आजम ए वफाकी घरू वजीर पारां दहशतगर्दन खिलाफ़ कामयाब कार्रवाई ते फोर्सिस खे भेटा पेश, दहशतगर्दी जे मुकमल खात्मे वारे अज़म जो बि वर्जा।

शहरल रिज़िक में कायम अमरीकी अॾनि खे निशानो बणायो वियो। अमरीकी पहिरियां जे ॿिनि खे निशानो बणायो वियो। पासदारनि इंकलाब चयो आहे त उर्दन में अमरीकी अॾे ते कार्रवाई दौरान अमरीकी जहाज़नि शहबाज शरीफ हारनि जे मालियाती वसीलनि ताईं रसाई बंद यकीनी बणाइण जी हिदायत कंदे चयो त घटि आमदनी वारनि घर फराहम करणु पहिरीं तरजीह आहे।

केस की जांच कंदड़ अदालती कमीशन घरू वजीर ज़ियाल अंजार के तलबिय जो वक्त तब्दील कर छो। घरू वजीर ज़ियाल अंजार के 10 सितंबर 11 वगे पेश थे हिदायत। कमीशन पांजो हुक्मनामे में चाहा है तो घरू वजीर वाज करे तो वारसन के सवाल पुछण जो हक है या न। रावलपिंडी के जुडिशल कॉम्प्लेक्स के पारा कमांड नाले वाले कानूनदान सनाला जो लाश हथ पुलिस लाश तवील में वी मामले की जांच शुरू कर छी। गड़ी यासीन वासी नौजवान सखर में हथियारबंदन हथा कत्ल लाश अस्पताल मुंतकिल। सखर बायपास व हथियारबंदन नौजवान मुनीर अहमद पुट गुल हसन जाफरी के कत्ल कयो। वाके बाद हथियारबंद फरार थी विया। इतलाते पुलिस लाश तवील में वी अस्पताल मुंतकिल कयो। पुलिस जो चवण है तो वाके जा कारण मालूम न थी सकया वधीक जांच कई पई वे। कराची की अदालत गुल प्लाजा साने के जांच लाए जी आई टी जोन वाली इस्तदा रद्द कर छी। अदालत चाहिए जी आई टी जोन मजिस्ट्रेट जो अख्तियार न है। बुधनी दुना तनवीर पास्ता समेत बिहार नामजद जवाबदार पेश थे। वकील चाहिए अदालत पुलिस के सरकारी इदार की कारकर्दगी जायजो वो हुक्म दिनों पर पुलिस समूर इदार क्लीन चिट कर पुरानो चालान बीहर पेश कर। पुलिस बदनीति के बुनियाद से एसोसिएशन के अहदेदार नामजद कर गडल जांच टीम जोड़ी वही अदालत इस्तदा रद्द कर छी। कोटड़ी में मालगाड़ी जा टे गाडा पटड़ी तां लही वया। अप ट्रेन से गाडियन की अच वञ मुअतल। कोटड़ी स्टेशन भरसा कराची का यूसुफ वाला कोयलो खी वेंदड़ मालगाड़ी जा टे गाडा पटड़ी तां लही वया। अप ट्रेन मुअतल थियण सबब मालगाड़ी के डाउन ट्रेक तां गुजारे वयो। न्यू सईदाबाद वेझो गोठ भाई खान वट पेर तिरकण सबब ढोरे में बुडी वेल राजा जो लाश गोठणन पांजे मदद पाण तहत कढ़ी वरतो। पुलिस लाश अस्पताल में जरूरी कार्रवाई बाद वारसन हवाले कर छो। पुलिस गुजरियल मामले ते बिन जणन के हिरासत में भी वरतो हो।

0: ऐं सिंध जे क्लासिकल रागी उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जे विछोड़े खे छाएतालीह वरिया विहामी विया। ख़ानदान जे फर्दनि शागिर्दनि ऐं मदान जी टंडरियाद में उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जे मज़ार ते हाज़िरी। गुलनि जी चादर चाढ़े भेटा पेश कई वई। उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जा ॻायल कलाम अॼु बि झर जंग मशहूरु बणियल।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है एनपीएस। तीन की ताकत के साथ इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: जो शहर पंहिंजो घर सकरण, ऐं सकरण जो आवाज़
4: जी एफ एम 90.8।

ऐसा जादुई सा असर हो जाएगा और एक मैजिकल प्रोडक्ट है, बस आप इसे लगाएंगे तो आपकी खूबसूरती आपको चुटकियों में मिल जाएगी और वो वाली खूबसूरती जो हमेशा आपके साथ मौजूद रहने वाली है। तो जल्दी जल्दी इसे इस्तेमाल करते रहिए, खूबसूरती का ख्याल रखिए और हमेशा के लिए हसीन, प्यारे और पुरकशिश बनते जाइए। अच्छा, तो यहाँ पर आप जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं सबको वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। प्रोग्राम के दूसरे घंटे में हमने एंट्रियां मार ली हैं और जितने भी लोग हमारे साथ हैं जनाब वेलकम। और साथ ही साथ मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया है कि आप मुझे बता रहे हैं, फर्ज कर लीजिए अगर आपको फ्यूचर में जाने का चांस मिल जाए, यानी कि फ्यूचर में आप चले जाएं, तो आप अपने लिए क्या देखना पसंद करेंगे कि भाई हम फ्यूचर में तो गए हैं लेकिन हम अपने लिए ये देखेंगे भाई हमारे पास बड़ा घर है, गाड़ी है, ये है, वो है, ये सब मिला या नहीं मिला देखेंगे या क्या देखेंगे, जल्दी से मुझे बताइए हमारे प्रोग्राम का ऐसे बनते जाइए। और आप मुझे 888 और फेसबुक पर ज्वाइन करते जा रहे हैं तो फेसबुक वाले लोग पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए, ऐसे आपकी मोहब्बतें जो नए प्रोग्राम से साबित होती हैं, तो मोहब्बतें दिखाइए, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए। बाकी आपके मैसेजेस की जानब आते हैं, बिल्कुल जी यहाँ पर पैनल की जानब आते हैं तो आपके मैसेजेस हैं और ये हमारे साथ हैं जी हमारी फजली। और फजली क्या कहती हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून, वेलकम कहते हैं स्वीटी आपको भी और कहती हैं कि सलाम टू माई स्वीट हार्ट मॉम एंड कायनात और सब स्वीट सिस्टर्स को। ओके जी, ओके, सबको वेलकम कहते हैं आपकी तरफ से और आपको भी वेलकम कहते हैं अपनी तरफ से। हमारे साथ हैं यहाँ पर और भाऊ, एक सॉन्ग सुनाओ शाम जो दिलकश नजारो तू आई माँ, काशिफ अघानी की आवाज में, बिल्कुल जी आपके लिए लगाएंगे गाना। गोट गुलाब लगा रही खान, साबिर लगा रही, सुल्तान लगा रही, रिजवान लगा रही, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम श्योर नाइस प्लीज प्लीज समीना गुडी। ओके, और ये भाऊ लिखते हैं कि अच्छा भाऊ जी मैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम यूज करूंगा। अच्छा अच्छा, वैसे आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि भाई मेडिकेटेड फार्मूला है। बहुत से लोगों की स्किन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप सी होती है ना, यानी कि सर्दियों में तो उनकी स्किन बड़ी ड्राई हो जाती है लेकिन गर्मियों में बड़ी ऑयली हो जाती है, उनको समझ नहीं आता कि भाई मेरी स्किन ऑयली है या ड्राई है या फिर सेंसिटिव है, लेकिन इस स्किन को कॉम्बिनेशन टाइप कहते हैं जो कि भाई हर मौसम के हिसाब से चेंज होती रहती है। तो अगर आपकी स्किन भी कॉम्बिनेशन टाइप है तो आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम हर मौसम में भी यूज की जा सकती है, हर स्किन के ऊपर भी यूज की जा सकती है और हर एक इंसान यूज कर सकता है, चाहे आप मर्द हजरात हैं चाहे आप खवातीन हैं, तो बस इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए। और कहते हैं ये भाऊ, भाऊ पैनल पे नजरें करम करें, पैनल पर ही मेरी नजरें करम है, कमेंट्स की जाने में गई नहीं हूँ। और कहते हैं मैं तो कराची से सुन रहा हूँ, यहाँ नहीं मिलती, कराची में नहीं मिलती तो नंबर के ऊपर रब्ता किया करें जी, नंबर किस लिए बताती हूँ बाकी। ओके जी, नंबर आपको बताने लगी हूँ, जल्दी से नंबर्स के ऊपर रब्ता कीजिए ताकि आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं तो वहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके लिए अवेलेबल हो जाए। तो नंबर है जनाब 03-12-50-25-907 बुरी 312 पंजाब पंचवी 970 यो नंबर आहे 03-27-38-4309 बुड़ी 332 है 73-84-309 ही नंबर आप बिल्कुल तवा डायल करे पानी करे भी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए सको था, चाहे तवा दुनिया जे केड़े भी कोने में हुंदा तवा जिलाए डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल कराई वेंदी, ठीक है। और जी हमारे साथ है मुनव्वर अली मुगल भाई, मीरपुर खास ही हमारा शो सुन रहे थे, सिद्रा मुस्का नाइस शो, मीरपुर खास एफएम की आवाज बहुत स्लो है, आवाज तेज करवा दें, ये चीज मैंने भी जरा देखी है मीरपुर खास में, जो होता है ना कभी गाने की आवाज बहुत स्लो आती है, आरजे की आवाज बड़ी तेज आती है, तो थोड़ा जो ना वो सिस्टम को सेट रखें जी, आवाज को जरा ऊंचा कर दे कुछ नहीं होता, और ये जरा सिस्टम का जो ना थोड़ा इशू है वाकई उनका, मुझे भी लगता है जब हम सुनते हैं जी मीरपुर खास का प्रोग्राम तो है उनके अंदर ये चीज, ठीक करें जी आप आवाज को जरा तेज कीजिए, कुछ नहीं होगा लोगों तक आवाज ज्यादा पहुंचेगी और ज्यादा लोग हमें सुन पाएंगे। अच्छा ये मुनव्वर भाई हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपका। बाकी आप फेसबुक वाले लोगों की जाने भी आ जाते हैं, लेकिन मेरे पास एक गाना मौजूद है तो हम जरा सोच रहे थे कि एक गाना भी सुन लेते हैं, तो ये वाला गाना सुनते हैं।

आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। जल्दी से इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए, क्योंकि आप खूबसूरत बनना चाहते हैं, लेकिन वो अलग बात है कि आपको सही तरह से गाइड नहीं किया जाता कि भाई आपने कौन से प्रोडक्ट का इंतखाब करना है। तो जल्दी जल्दी से डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते जाइए। अच्छा किशोर भाई हमारे साथ मौजूद है, क्या बात है जी, अपना दुखड़ा सुना रहे हैं कि बचपन में मेरे साथ ये हो गया। ऐसी बात है, वैसे एक चीज मेरे साथ ही हुई थी बचपन में, लेकिन वो मैं शेयर नहीं करूंगी। तो हाँ, ये आए जैसे मानो खुदार हूं ना, जैसे साफ दिल जमान हूं ना, वो बिल्कुल ये करना है। तो ये अच्छी बात है, ऐसा ही करना चाहिए मुझे ये लगता है। अच्छा, सो अखलाक भाई को शायद नींद आ रही है और ये हमारे साथ हैं जी रिजवान अली। रिजवान भाई क्या कहते हैं, कल आपने मेरी फरमाइश नहीं लगाई थी। बिल्कुल जी, आपकी फरमाइश मुझे याद है, आपका गाना लगाते हैं। नजर मोहम्मद भट्टी हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, मटियारी से आपने हमें ज्वाइन किया है, आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया। फरवा कहती हैं, आप ही आपका प्रोग्राम बड़ा जबरदस्त है, बहुत शुक्रिया फरवा। एहसन अली बुक्टी हमारे साथ है लाड़काना से, आप हमारा शो सुन रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया। लाड़काना में आपको हर जगह डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है, आय हाय। जब मैं बोल रही हूँ मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना कि लाड़काना में आप कहीं भी चले जाएंगे तो आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल जाएगी। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ना एक ये क्वालिटी है कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है, और यानी कि इसका कोई डर नहीं कि भाई आपकी अगर स्किन सेंसिटिव हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, ये प्रॉब्लम है स्किन के साथ हो, आप नहीं प्रोडक्ट यूज कर पाते हैं, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम बिल्कुल लगा सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, दिल खोल कर इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए। चाचा खालिद भी हमारे साथ ही, चाचा खालिद बिल्कुल जी, टॉपिक आपको समझ आया या अभी तक नहीं आया? आरडी किंग हमें सुन रहे कहते हैं, राशिद अली शो बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच जी। बतली सियाल भाई हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा फहीम भाई कहते हैं, मैं संडे वाले दिन कराची में अवेलेबल कराऊंगा और सर खालिद से भी तबीयत पूछने जाऊंगा। चलें जी, अच्छी बात है। और आप जरा मालूमात कीजिएगा कराची में कहाँ कहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल कराने की नीड है। वैसे जहाँ जहाँ पर आप रहते ना वहाँ पर तो करा ही दे, ताकि आपके लिए भी आसानी हो और बाकी जो लोग जाएं तो वो भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम आराम से परचेज कर सके। अच्छा बिलाल अली हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूं जी, आप बताएं कैसे हैं। और यहाँ पर महर इरफान सियाल साहब हमारे साथ हैं, ज्वाइन कर चुके प्रोग्राम को, कहते हैं ग्रेट प्रोग्राम में मार्जे, थैंक यू वेरी मच सर, ये तो आपकी मेहरबानी है कि आपको प्रोग्राम पसंद आता है। बहुत शुक्रिया। अच्छा अब्दुल गफार भाई हमारे साथ है, खुश आमदीद, वेलकम। और जी खालिद नोटकानी हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, मातली से आप हमारा शो सुन रहे हैं, खुश आमदीद। मातली में बताएं जरा डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली या फिर अभी तक नहीं?

तसल्ली कर लीजिए, लाड़काना पूरे लाड़काना में डी स्किन ब्यूटी क्रीम हर जगह अवेलेबल हो चुकी है, तो आप भी बस कहीं पर भी जाइए आपको आराम से डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल जाएगी। और इसी के साथ साथ नहीं भी मिल रही है, फर्ज कर लीजिए कुछ छोटा मोटा जनरल स्टोर है वहाँ पर अगर अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जी नंबर के ऊपर रब्ता करेंगे जो नंबर आपको मैं बता रही हूँ प्रोग्राम के अंदर। अच्छा जी पाल भाई, कहते भाई नंबर तो ऐसे बता रही हूँ जैसे वो फ्री में दे जाएंगे प्रोडक्ट। नहीं, नंबर आपको याद हो जाए ना, इसीलिए ऐसे बताती हूँ आराम से स्लो स्लो। वैसे कई लोगों की ये भी शिकायतें आती है कि सदरा बड़ा तेज बोलती हैं, नंबर बड़ा तेज बताती हैं, तो हम नोट ही नहीं कर पाते, इसलिए मैं जरा कोशिश करती हूँ कि थोड़ा स्लो में बता दूँ ताकि आप जरा नोट कर लें।

अच्छा खालिद भाई जान कहते हैं कि मातली में नहीं अवेलेबल हुई अभी तक डी स्किन ब्यूटी क्रीम। भाई आप जाइए तो मालूमात लीजिए और वहाँ से अच्छे से पूछिए दो चार जनरल स्टोर से, और फिर जो आपको नंबर बता रही हूँ उसके ऊपर आप रब्ता कीजिएगा, ठीक है। और हसनैन दर्स भाई हमारे साथ है, शहर दड़ोखा हसनैन दर्स, सतार दर्स, वकार दर्स, सूरन जो सतायल, शायर फिदा हुसैन दर्स, आईली भावन के चौथा भली करी आया। अच्छा जाहिद अली बुर्दी भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ जी, आप बताएं कैसे हैं। सही बात है, सारे लोग कराची जा रहे हैं, कराची वाले लोग आ जाएंगे।

0: भाग वारा आयो छो तो डे स्किन ब्यूटी क्रीम असांजी आए तव्हां बि भाग वारा थियो बाबा डे स्किन ब्यूटी क्रीम पंहिंजी करायो छो त वठी अचो ऐं डे स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमालु कयो छो त तव्हां सुहिणा थी वेंदा ऐं ये हमारे साथ जी अच्छा महर इरफान सियाल साहब कहते हैं मैम आई एम लिसनिंग योर प्रोग्राम फ्रॉम डिग्री ओके जी डिग्री से आप हमारा शो सुन रहे सर बहुत शुक्रिया और पहलवान चांडियो भाई हमारे साथ हैं क्या बात है हेलो जी हेलो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाएगा पहलवान भाई यहाँ पर टाइम हुआ है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का छोटे से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होंगे जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते आपने बिल्कुल कहीं नहीं जाना अपनी जगह से नहीं हिलिएगा ठीक है
1: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ ॿिन ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा तीन की ताकत मिले फसल भरपूर खिले
3: सिंध के माथे का झूमर
4: DFM 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज

लहर, जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली 92 नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी, इस प्रोग्राम में आप लोगों के साथ बातें की जाती हैं बहुत ज्यादा और आपकी खूबसूरती का ख्याल रखा जाता है उससे भी बहुत ज्यादा। अगर आप भी हसीन बनना चाहते हैं, खूबसूरत बनना चाहते हैं, खूबसूरती का ख्याल रखना चाहते हैं तो बिल्कुल जी आप हमारे प्रोग्राम में आ जाइए। आपको मालूम पड़ेगा कि अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपके लिए खूबसूरती और खूबसूरती हासिल करना कितना आसान काम हो जाएगा। वैसे तो जब आप मार्केट जाते हैं तो वो वाली बात है कि बिल्कुल दुकानदार बहुत सारे आपको प्रोडक्ट दिखा देते हैं और कहते हैं कि ये वाला बहुत अच्छा है, ये वाला बहुत अच्छा है, इसकी ज्यादा आजकल डिमांड चल रही है, लेकिन ऐसा कोई सी नहीं होता। अगर आप मार्केट जाएं तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करने जाएं, आपके जहन पे ये चीज होनी चाहिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कभी सिद्रा क्यों इतनी बातें करती है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में, क्योंकि पर्सनली बताऊं तो भाई हमारे घर में भी यूज हो रही है, सब लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पांस मुझे मिल रहा है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनको पता है कि सिद्रा बिल्कुल सही कह रही है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को जो ये विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन है, ये दोनों चीजें बड़ी निराली बना देते हैं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम ये 2-in-1 क्रीम है, यानी कि ये एक नाइट क्रीम भी है। जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा ऐसा जैसे कि आपने फेशियल किया हुआ है। तो ये इतना कमाल का प्रोडक्ट आपके लिए मार्केट में अवेलेबल है तो भाई क्यों आप चांस मिस कर रहे हैं, मौके पे चौका मारिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि खूबसूरती को मजीद निखारने के लिए अपनी रोजमर्रा ब्यूटी केयर में आप शामिल करेंगे जब डी स्किन ब्यूटी क्रीम, तो इसका नरम और खूबसूरत एहसास आपकी स्किन के रूटीन को मजीद खास बना देगा और साफ सुथरी अच्छी तरह मॉइस्चराइज भी आपकी स्किन को कर देगा, आपकी शख्सियत में ताजगी और एतमाद का एहसास भी पैदा हो जाएगा। तो अपनी रोजमर्रा की ब्यूटी केयर रूटीन में आप इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि आपकी स्किन को बनाए इतना खूबसूरत, इतना शानदार, ये बस आपकी सोच है। अच्छा, मर्द हजरात भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खवातीन भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में ये चीज भी आपको पता है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों में आपको रिजल्ट देना स्टार्ट कर देती है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करने वाले लोग भाई रेडी हो जाइए, डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी खूबसूरती को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी स्किन को ग्लोइंग बना देती है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप परचेज करें तो आप जरा इन चीजों से भी बचें कि दुकानदार आपको कोई और प्रोडक्ट पकड़ा दे। कहते कुछ मासूम लोग होते ना, पढ़े लिखे नहीं होते, जिनको नहीं होता पता, बस वो जाते हैं दुकानदार उनको जो भी बोलता है तो बस वो यकीन कर लेते हैं। तो जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करें ना तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के डब्बी के ऊपर एक डॉक्टर औरत का फोटो है, ठीक है, डॉक्टर माई जो फोटो आहे। जॾहिं तव्हां ॾिसो त बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम आहे हुन जे मथां हिकिड़ी माई जो फोटो आहे जेका डॉक्टर आहे, त पोइ तव्हां सम्झी वञो ओ ही आहे त उहो क्रीम जेका सिद्रा ॿुधाईंदी आहे। बिल्कुल ही, सो इहा निशानी तव्हां यादि रखी छॾियो, जॾहिं डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठो त माई डॉक्टर जेका आहे न जो फोटो ॾिसी करे वठिजो, ठीकु आहे। ऐं ॾाढी सफ़ा प्रीमियम क्वालिटी जी प्रोडक्ट आहे, पाकिस्तान में, पाकिस्तान खां ॿाहिरि जे मुल्कनि में बि तव्हांखे मिले थी, तमामु ज़बरदस्त प्रोडक्ट आहे। ऐं सॼे पूरे पाकिस्तान में सिर्फ़ 2 या 3 अहिड़ा प्रोडक्ट आहिनि जंहिंजे अंदरि वाइटमिन ई बीट्स आहिनि, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन आहे, ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम बि उन्हनि मां हिकु आहे। सो तव्हां ख़ुशि नसीब आहे, तव्हां वटि डी स्किन ब्यूटी क्रीम पहुती आहे। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो फ़ाइदो वठो बाबा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कयो ऐं सुहिणो सुणा थी वञे। अच्छा, तव्हां नंबर ते राबतो नथा कयो छू भला? नंबर से राबतो कयो ऐं पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल करायो। अच्छा, हुनखां अलावा हिकिड़ी अदी मूंखे चयो न त मातली में कोन थी मिले डी स्किन ब्यूटी क्रीम, त अदा हुनखे ॾसींदमि मां त तव्हां फानी ऐं माती खान जनरल स्टोर आहे जंहिं ते तव्हां वञी करे डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी सघो था। फानी जनरल स्टोर ऐं माती खान जनरल स्टोर ते तव्हांजे लाइ डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल थियल आहे, मातली वारा वञी उतां वठी सघंदा, ठीकु आहे। सो बाक़ी ॿिया बि कुझु जनरल स्टोर हूंदा जेके आराम आराम सां मूंखे ॿुधाईंदा वेंदा त तव्हांखे ॿुधाईंदा वेंदासीं। सो इहे उहे जनरल स्टोर आहिनि जितां तव्हां वञी आराम सां डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी सघो था। बाक़ी नंबर ॿुधाईंदी हलां जेको तव्हां डायल करे पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराईंदा, त उहे नंबर आहे सभ खां पहिरियां जेको हिकिड़ो नंबर आहे उहो आहे 03-12-50-25-907 03-12-50-25-907 ऐं ॿियो नंबर आहे 03-27-38-43-09 03-73-74-84-309 बिल्कुल सही नंबर आहे। हिन नंबर ते तव्हां कॉल बि करे सघो था, मैसेज बि करे सघो था ऐं भाई साहब खे ॿुधायो भाई साहब असां वटि कोन थी मिलेव डी स्किन ब्यूटी क्रीम, अवेलेबल कराए वञो, असां बि हणूं, असां बि सुहिणा थियूं।

हम लास्ट लिंक में आ चुके हैं प्रोग्राम की, तो सब लोगों को वेलकम इन खुश आमदीद। फहीम भाई कहते हैं कि भाऊ डॉक्टर जो नालो छाए, डॉक्टर माई जो नालो डॉक्टर आए, परायण माई जो नाला न पसंद बस तव्हांखे निशानी ॿुधाई न, निशानी ते तव्हां गौर कजो, सही आहे जी। उन्हनि माण्हुनि खे जंहिंखे थोरो बेवकूफ़ बणाईंदा आहिनि दुकानदार, उहे थोरो उन्हनि खां होशियार आहिनि, सही आहे। और यहां पर जी

0: अच्छा ये हमारे साथ हैं जयपाल भाई, लिखते हैं कि जरूरी नहीं कि ताल्लुक मोहब्बत का ही हो, दोस्ती के रिश्ते भी इश्क से ऊंचा मकाम रखते हैं। और लिखते हैं भाऊ जी, जनाब खुशी जी की तरफ से भी सलाम पूछ रही थी आपका, दीदी का शो ज्वाइन करते हो? मैंने कहा कभी कभी ज्वाइन करता हूँ। अच्छा खुशी का बताओ कैसी है, ठीक ठाक है, मजे में है? और ये हमारे साथ ही किसी ने मैसेज किया है, सिर्फ लिखा है हाय कैसी हो। जी हाय मैं ठीक हूँ, आप बताएं कौन है और कैसे हैं। और ये हमारे साथ हैं जी जुलरी का खाले कलाशारी शो नाइसा सॉन्ग फरजाना परवीन जो बुधायो। फरजाना परवीन तांके बिल्कुल बुधराइंदा सी भाजू मोहब्बतवान पिनाई बुधायो तांटी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कई या कौन। अच्छा मोहम्मद जमान भाई लिखते हैं कि चापे का फ्यूचर में जाऊंगा तो सबसे पहले कुछ देखना है, लेकिन मैं ये देखूंगा कि वो जो फेस पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाती है तो रिजल्ट चेक करूंगा जाकर। इतना फ्यूचर में जाएंगे बस ये देखने जाएंगे? ये तो आप वैसे ही अभी चुटकियों में देख सकते हैं, आप इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम, आपको पता चल जाएगा कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का कितना अच्छा रिजल्ट है। जयपाल भाई कहते हैं कि वैसे भाव ट्राई करूंगा मगर पहले खुशी जी को यूज करवाऊंगा। ओके ओके जी ओके, भाभी को पहले यूज करवाइए फिर आप यूज कीजिए, ठीक है? और कुछ नहीं होगा, भाभी बोलेगी कि वाह फर्स्ट टाइम जयपाल ने इतनी अच्छी प्रोडक्ट की फरमाइश करी है। अच्छा दिवेक भाई भी हमारे साथ है, कहते हेलो सिस्टर मैं भी आपका शो सुन रहा हूँ, छोटी सी रिक्वेस्ट आपके लिए मास्टर मंजूर का कोई भी सॉन्ग प्ले करें। भाई रिक्वेस्ट जब होना तो थोड़ा पहले आते हैं प्रोग्राम में, आप जानते हैं कि लास्ट लिंक जो होता है ना वो ऑलरेडी पहले से लोग फरमाइश कर देते हैं तो उनके गाने लग चुके होते हैं, तो ये जो आप गाने की फरमाइश करें ना ये आपको 5 बजे वाले प्रोग्राम में सुनाऊंगी, ठीक है? और बहुत शुक्रिया प्यारे भाई आप हमारे साथ है। ये हमारे साथ है सिद्रा जी, गुजरे पल वापस मिल जाए तो क्या ही बात है। मोरी से राजा हमीरचंद, किशोर कुमार, हीरा भाई, सुरेश अकबर और कुंभर नवाब। अच्छा सुरेश अलग है और अकबर कुंभर अलग है और नवाब ड्राइवर है। और जी हमेरा चना का गाना सुनना चाहते हैं, चले मैं कोशिश करूंगी, आपकी फरमाइश चल गई तो चला लेंगे। और फ्रॉम प्यार अली जरवार भाई हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह बाजी आप कैसी हैं, हमेशा हंसी मुस्कुराती रहे बाजी। जी आप भी खुश रहें और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं अगर आपके एरिया में मिल रही तो जो नंबर आपको बता रही हूँ उनके ऊपर रابطہ किया करें। और जी किशोर भाई लिखते हैं कि आप भी आप हमें अपने दुखड़े रोज सुनाती हो, असा हिते अगर आई हो कहीं अवां जी मोहब्बत आए, बाकी हिते असा के जिको मिलियो हुन जी उम्मीद कोन हुई, उम्मीद तो खैर असा के भी नहीं, असा के भी लाइक कुछ मिली हो पर बस चाह के मारे कोई हिते छो आ तो कोई हिते छो आ, हर कहीं पांजो पांजो एकड़ो आज को आने तो रीजन आए। सो थैंक यू, तांजो मोहब्बतू आए तैने काबिल समझो पया, आई यकीन जानो त इलाही तकलीफ थी दिया जडे बिला वजा तवां के मानू तंग कना है। सो खैर इनन गालन के त डिठो विंदो बरहाल तवां मुके बुधाया डी स्किन ब्यूटी क्रीम करें ता इस्तेमाल कयो। और जी ये खालिद भाई हमारे साथ हैं जो हमें मातली से सुन रहे हैं, तो मातली में बिल्कुल आपको बता दिया कि आप कहां से जाकर डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कर सकते हैं, तो जल्दी जल्दी से आप मातली में जाइए पानी जनरल स्टोर के ऊपर या फिर माती खान जनरल स्टोर के ऊपर, वहां पर आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम आराम से मिल जाएगी। अच्छा ये हमारे साथ है गुलजार हुसैन। ओके जी गुलजार भाई आपको वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया के साथ। भाई मैं भी आपको यही कहती हूँ अपने एरिया में ही विजिट किया करें, बताएं जरा, बताएं नहीं बल्कि पूछे लोगों से कि कहाँ कहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि अगर आप जाएं अपने दरवाजे से निकलें जो भी करीबी जनरल स्टोर है वहां पर आपके डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल जाए। अच्छा फरवा तुम गाने की फरमाइश कई मां ॾिसां थी हली वियो त हलाईंदो न त 5 बजे वारी प्रोग्राम में ॿुधी वठंदासीं। अच्छा पहलवान चांडियो भाउ तव्हां बि गाने जी फरमाइश कई आहे ऐं तव्हांखे प्रोग्राम पसंदि अचे पियो, सो थैंक यू सो मच। रमज़ान भाभी असांखे जॉइन करे चुको आहे, रमज़ान भाउ तव्हांजो बि मोहबतूं आहिनि, तव्हां प्रोग्राम ॿुधो पिया।
1: ओए मां चंड जो छोलियो किनारो तू
0: अच्छा फजीला कहती हैं कि टॉपिक में देखना चाहूंगी कि हमारी आरजे सिद्रा मुस्कान एफएम पर है या हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है रेडियो, क्योंकि आप ही वजह से तो सुनते हैं। यदि वैसे मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी आपका शो सुने, आरजे खाला सिद्रा मुस्कान का शो सुने। अच्छा चलिए जी, इंशाल्लाह वो भी सुनेंगे। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाती रही है।

जी ओके बिल्कुल, मैं भी यही सोच रही थी कि ये प्रोग्राम शाम के प्रोग्राम, ये गाना जो है वो शाम के प्रोग्राम में अगर फरमाश होता तो क्या ही हो जाता, लेकिन जयपाल भाई ऐसी प्रोग्राम में आते बोलेंगे मेरी मर्जी। ओके जी, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कीजिए, इसमें आपकी मर्जी बिल्कुल भी नहीं चलेगी, क्योंकि मैं हमेशा चाहती हूँ कि भाई आपकी खूबसूरती जो है वो निखरती रहे। आपकी अगर खूबसूरती निखरेगी तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। अगर आप भी ये चाहते हैं कि भाई चेहरे की वजह से थोड़ा परेशान है, स्किन सेंसिटिव है, कॉम्बिनेशन टाइप है, हर तरह से आपको ये लगता है कि भाई हमारी स्किन के मुताबिक तो कोई प्रोडक्ट तैयार ही नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट आप लगा चुके हैं आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिला जैसा आप चाहते हैं, तो एक मरतबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाकर देखिए, क्योंकि वैसे ही जब आप दो रातें इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाएगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये भी बात है कि ये मेडिकेटेड फार्मूला है, और जो स्किन के डॉक्टर्स होते हैं ना, बिल्कुल उन सब डॉक्टर्स ने मिलकर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को तैयार किया है। और एक मजे की बात है कि इसके अंदर विटामिन ई बीट्स हैं और माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन है। तो जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाएंगे तो आपकी ये नाइट क्रीम भी हो जाएगी, और आपको मिलेगा ऐसा निखार जो कि खवातीन बहुत महंगे महंगे फेशियल कराकर हासिल करती हैं, आपको मिल जाएगा जी थोड़े थोड़े टाइम में और थोड़े थोड़े पैसों में। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए, खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए, और अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराते रहिए। बिल्कुल जी, शाम जो दिलकश नजारो तू वही माँ, समुंड जो छोलियो किनारो तू वही माँ, हिते बियो गानो ॿुधंदासीं, बस अलाए कंहिंजो ही गानो हूंदो तव्हां कॾहिं कॾहिं मूंखे चरियो करे छॾींदा आहियो। एॾियूं गाननि जूं फरमाइशूं कबियूं आहिनि, न कयो बाबा न कयो, न त कॾहिं जिन चढ़ियो न मूंखे, कंहिंजी फरमाइश कोन लाहींदी मां। ऐं बाक़ी जिन रहिजनि था मूंखे अचे शाम वारे प्रोग्राम में फरमाइश कजो, बिल्कुलु तव्हांजा गाना हलाईंदासीं। और एडवोकेट कामरान शाह सारकी हमारे साथी जी, वालेकुम असलाम, ख़ुशामदीद कहते हैं भाईजान को।

अच्छा चाचा बिल्कुल सिंधी में नंबर ॿुधाईंदी आहे उन्हनि माण्हुनि जे लाइ जेके सिंधी नंबर जेको आहे न सवलो लॻंदो आहे. अच्छा सफ़दर अब्बास में सुन रहे हैं. सफदर अब्बास कहते हैं सलाम जी वालेकुम अस्सलाम सुपर हिट मैसेज करूं आपको बहुत अच्छे प्रोग्राम कर रही हैं आप. ओके बहुत शुक्रिया थैंक यू. अच्छा हिदायतुल्लाह कहते हैं वैसे ये डॉक्टर तो अपनी है ता सुनाने उस्ताद शाह शेरा.

अच्छा बिलाल लिखते हैं कि यूं मिलते हैं जैसे ना कोई जान ना पहचान, दानिस्ता नसीर आज वो अनजान बहुत है। आए हाय। अच्छा कामरान खान सार की बात हमारे मोहब्बत हुआ प्रोग्राम उधू पया फरवा, थैंक यू सो मच तुम भी इससे गुड मौजूद आए हो। नहीं चाचा, इतने सारे प्रोग्राम्स कर लिए ना तो अच्छी खासी स्किन के बारे में नॉलेज हो चुकी है पहले से ही। बिल्कुल जी, पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते रहिएगा, इससे ये होता है कि बहुत सारे लोगों तक हमारे ये पैगाम पहुंचता है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बहुत सारे लोग जान जाते हैं। और एडवोकेट कामरान खान भाई लिखते हैं कि आजकल मैं आपका प्रोग्राम बहुत दिल से सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, टाइमिंग रिपीट करें। मेरी प्रोग्राम की टाइमिंग है जी 1 बजे से लेकर 3 बजे तक और मैं दूसरा प्रोग्राम करती हूँ 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। जवार मोहम्मद बचल छंबानी भाई, आपको भी वेलकम कहा जाता है। किशोर भाई कहते कितनी हसरत है हमें तेरे शो में कमेंट करने की बस कहते हैं कि सही है कुछ नहीं कहते

भाई ये गाने चलाकर हम उन गानों की जो ना वाइब ले रहे होते अच्छा शुएब मंगी भाई वालेकुम अस्सलाम, आपको वेलकम कहा जाता है। इसी के साथ आप लोगों से लेते हैं जी इजाजत, वरी तासा मुलाकात मुझे थे पई 5 बजे वाले प्रोग्राम में। सो पांजो ओ हिनो सारो ख्याल रखना। आई बिल्कुल डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल करजो बाबा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम ॾाढी भली क्रीम अथव, मज़ाक न अथव अला तव्हां इस्तेमाल करे ॾिसजो, तव्हांखे ॾाढा भला रिज़ल्ट मिलंदा। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका मेडिकेटेड क्रीम आहे, ट्राई करे ॾिसजो। ऐं पंहिंजो इलाही सारो ख़्यालु रखो, किथे का ग़लती थी हुजे त माज़रत कयूं था, जंहिंजो फीडबैक रहिजी वियो आहे, गानड़ो शानड़ो रहिजी वियो त माज़रत कयूं था। सो मोकिलाणी नाहे बाबू, सिन सलामत, सा सलामत, अलाह हाफ़िज़, बाय बाय, लव यू ऑल एंड

0: This is FM 92.
1: Over to commercials.
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में. डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो.
3: बवासीर, खूनी बादी जो इलाज बगैर इंजेक्शन जे, बगैर ऑपरेशन, इंशाल्लाह सजी जिंदगी लाए खत्म. मैदा जिगर आंडे जा माहिर मुआलिज, शुगर जो इलाज सुभाण अज. खालिस देसी जड़ी बूटियों जो इलाज अपनायो, बीमारियों खां शिफा हासिल करियो इंशाल्लाह. एड्रेस हक बाउ दवाखानू, बिल मुकाबिल इलाइट बैंक, हराना का स्टाफ, हैदराबाद. मोबाइल नंबर 0301-408-2223.
4: हट्टो ऐं सजावली आम लाइ खुश खबरी.
5: तव्हां जे पंहिंजे शहर मकली में हुसैनी मेडिकल सेंटर ते आवा खान डाओ यूनिवर्सिटी ऐं जन अस्पताल कराची जो माहिर सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर माशूक अली ख्वाजा, MBBS, FCPS, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन हफ़्ते जा 7 ॾींहं शाम 3 खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज ऐं ऑपरेशन करे थो. ख़ासि तौर ते पिती आंडे जा ऑपरेशन लेज़र वसीले कंदा आहिनि. ॿारनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर किरन मेमण सूमर खां रोज़ानो 3 वगे खां शाम 6 वगे ताईं क्लिनिक ऐं 24 कलाक आन कॉल, 24 कलाक एमरजेंसी सर्विस, नॉर्मल डिलीवरी ऐं मुख़्तलिफ़ क़िस्म जे ऑपरेशन जी सहूलियत मौजूदु आहे. हिन खां अलावा फिज़ियोथेरेपिस्ट
6: ईरान जा समूरा ऑयल टैंकर तबाह कया वेंदा. آئل ٹینکر سے امریکی حملن بعد ایران جو بھی امریکی ہدفن تے جوابی وار اردن میں امریکی اڈن کے نشانوں بنائے ویو. آبنے

पंहिंजो घर स्कीम ज़राअत ऐं एस एम एस में तरक़ीअ लाइ फिनांसिंग जो जाइज़ो वरितो वियो। शहबाज़ शरीफ हारनि जे मालियाती वसीलनि ताईं रिसाई बिना रंडक यकीनी बणाइण जी हिदायत कंदे चयो त घटि आमदनी वारनि खे सस्ता घर फराहम करणु पहिरीं तरजीह आहे। हुकूमत सां पेट्रोल जे अघनि में घटिताईअ बाबति संजीदा ॻाल्हियूं करे रहिया आहियूं, कुझु तजवीज़ूं बि हुकूमत आॾो रखियूं आहिनि। कराचीअ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे जमायत इस्लामीअ जे अमीर हाफिज़ नईम चयो त धरणनि दौरान हुकूमत राब्तो कयो हो। मामले ते असां बि अपोज़िशन सां राब्ता कया आहिनि, पेट्रोल सस्तो थियणु घुरिजे। सिंध विरहाङे वारनि बयाननि ख़िलाफ़ सिंध बार पारां सुभाणे यूनिटी ॾियारो मल्हाइण जो ऐलान, अदालतुनि में बि को वकील पेश न थींदो। सिंध बार काउंसिल जो चवणु आहे त सिंध जे वहदत ऐं यकजहतीअ ख़िलाफ़ कंहिं बि क़दम खे क़बूलु न कयो वेंदो। सिंध विरहाङे वारा बयान बर्दाश्त जोॻा न आहिनि, एहतिजाज तौरु सुभाणे अदालत कारवाइनि जो बाइकाट कयो वेंदो। मीर रज़ा केस जी जांच कंदड़ अदालती कमीशन घरू वज़ीर ज़ियाल अंजार जे तलबीअ जो वक़्तु तब्दील करे छॾियो। घरू वज़ीर ज़ियाल अंजार खे 10 सेप्टेम्बर 11 वॻे पेश थियण जी हिदायत। कमीशन पंहिंजे हुकमनामे में चयो त घरू वज़ीर वाज़ियो करे त वारसनि खे सुवाल पुछण जो हक़ आहे या न। कराचीअ में मंगो पीर में शागिर्द जे क़तल ख़िलाफ़ वारसनि जो थाणे आॾो लाश रखी एहतिजाजी मुज़ाहिरो। धरणो महिराण सिटीअ में घर अंदरि पुर दौरान मज़ामत ते क़तल थियल शागिर्द जे वारसनि एहतिजाज कयो। वारसनि चयो आहे त गुज़िरियल ॾींहुं 6 फोरू घर अंदरि दाख़िल थिया। पुलिस वर्दियूं पहिरियल 2 फोरू बि शामिल हुया जिन खे फायरिंग करे नौजवान क़तल कयो। गढ़ी यासीन वासी नौजवान सखर में हथियारबंद हथां क़तल, लाश इस्पताल मुंतकिल। सखर बाईपास वटि हथियारबंद नौजवान मुनीर अहमद पुटु गुलसन जाफरीअ खे क़तल कयो। वाक़े बाद हथियारबंद फरार थी विया। इतलाह ते पुलिस पहुची लाश इस्पताल मुंतकिल कयो। पुलिस जो चवणु आहे त वाक़े जा कारण मालूम न थी सघिया आहिनि, वधीक जांच जारी आहे। कराचीअ जी अदालत गुल प्लाज़ा साने जे जांच लाइ जी आई टी जोन वारी इस्तदा रद्द करे छॾी। अदालत चयो त जी आई टी जोन मजिस्ट्रेट जो अख़्तियार न आहे। ॿुधणीअ दौरान तनवीर पास्ता समेत ॿिया नामज़द जवाबदार पेश थिया। वकील चयो त अदालत पुलिस खे सरकारी इदारनि जी कारकर्दगी जो जाइज़ो वठण जो हुकुम ॾिनो हो। जांच लाइ जी आई टी जोड़ी वञे। अदालत चयो त ईंदड़ ॿुधणीअ ते चालान बाबति फ़ैसिलो कयो वेंदो। इहो बि तय कयो वेंदो त सरकारी इदारनि खे केस में जवाबदार ॼाणाइणो आहे या न। खेरपुर में चाइनि ॿारनि जी माउ मायरा लाशारी जा कातिल गिरफ़्तार न थियल खां वारसनि जो एहतियाजी मुज़ाहिरो। धरणो ॻोठ भुगरो जे रहवासियुनि पारां केस में मुलविस जवाबदारनि जी गिरफ़्तारीअ लाइ मेराण हाईवे ते टायरनि खे बायूं ॾेई धरणो हयो। मुज़ाहिरीन चयो त औरत जे क़तल केस में नामज़द जवाबदार गिरफ़्तार कया वञनि। वाराए भरिसां मामूली ॻाल्हि तां गाड़े बिरादरीअ जे ॿिनि धिरनि में जहिड़ो सिरो टो लॻण सबबि नींगर मारिजी वियो। ॻोठु वलीआबाद में गाड़ी बिरादरीअ जे ॿिनि धिरनि में जहिड़ो थियो। सिरूं लॻण सबबि 15 वरनि जे नींगरी शकीला गाॾी मारिजी वई। पुलिस जवाबदार निसार गाॾीअ खे गिरफ़्तार करे वरितो। काज़ी अहमद में लुंडकी शाह ऐं दौलतपुर शाख में ज़रई पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ पुछड़े जे आबादगारनि जो एहतिजाज। शाखनि जे पुछड़ ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो। आबादगारनि चयो त आपाशी अमलदार मुंड जे बासरनि ज़मीनदारनि खे पाणी विकिरो करे रहिया आहिनि। फ़सुल बचाइण लाइ पुछड़ ताईं पाणी पहुचायो वञे। घोटकीअ में थाणे अंदरि ॻोठाणे जी तज़लील करण वारे केस जी ॿुधणी इल्ज़ाम हेठि आयल अॻूणो एसएचओ ऐं ॿिया अदालत में पेश। ॿुधणी सुभाणे ताईं मुलतवी। सखर मां स्कूल वेंदे 13 वरनि जी निंगरी मुबैना तौरु अगवा केस दाख़िल। आबाद थाणे जे हद ॻोठु आबाद इलाइक़ा जे रहवासियुनि 13 वरनि जी निंगरी इकरा मुबैना तौरु अगवा थी वई। निंगरीअ जे ॾाॾे जे फरियाद ते चइनि जवाबदारनि अब्दुल करीम उर्फ माणे खोसो, रियाज़ खोसो, फाद खोसो, फैसल खोसो ख़िलाफ़ केस दाख़िल। कोटड़ीअ में मालगाड़ी जा 3 गाॾा पटड़ीअ तां लही विया। अप ट्रेन ते गाॾियुनि जी अचु वञु मुअतल। कोटड़ी स्टेशन भरिसां कराचीअ खां यूसुफ वाला कोयलो खणी वेंदड़ मालगाड़ी जा 3 गाॾा पटड़ीअ तां लही विया। अप ट्रेक मुअतल थियण सबबि मालगाड़ीअ खे डाउन ट्रेक तां गुज़ारियो वियो।

0: ऐं सिंध जे क्लासिकल रागी उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जे विछोड़े खे शायद अलीअ वरिया विया विया खानदान जे फर्दन शागिर्दन ऐं गीत अॼु बि जर जंग मशहूरु बणियल
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है एनपीएस 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सोना लाया है NPS, तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 ने

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niha Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: हुकूमत मकानी कानून 2013 में तरमीमन जो मसौदो तैयार करे वरतो मकानी इदारन जे मेयर डिप्टी मेयर चेयरमैन ए वाइस चेयरमैन जा इख्तियार ऐं ज़िम्मेवारियूं वाज़े करण जी तजवीज़ आहे मकानी काउंसल ऐं सूबाई खातनि विच में राबता बहितर बणाइण जी बि तजवीज़ ॾिनी वई मकानी काउंसल जी मुदत ख़तम थियण खां 120 ॾींहं पहिरीं चूंड अमल कराइण लाज़मी करार ॾियण जी तजवीज़ शामिल वक़्त ते मकानी चूंडूं न थियण जी सूरत में रिटायर्ड मेयर या चेयरमैन खे एडमिनिस्ट्रेटिव तौरु कमु करणु जारी रखण जी तजवीज़ ॾिनी वई यूनियन काउंसिल ऐं यूनियन कमेटीअ जे चेयरमैन ऐं वाइस चेयरमैन खे बेतमादी वारे तहरीक बाबति छिकूं बि तरमीम में बिल में शामिल
4: अब मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि जिसने असेंबली में खड़े होकर रेजोल्यूशन पर वोटिंग के वक्त वॉकआउट करना मुनासिब समझा या जिस पार्टी ने असेंबली में आना मुनासिब नहीं समझा तो मैं उनको भी पीट पकड़ो जैसा समझूंगा अगर पकड़ो कुछ नहीं बोल रहा तो उसका भी वही किरदार है जो एमक्यूएम और पीटीआई
3: सूबन बाबति पीर पघारे जो किरदार बि एम के वारो आहे कंहिंजी ख़्वाहिश या मर्ज़ीअ ते रेफरेंडम नथो थी सघे आइन रेफरेंडम बाबति वाज़ आहे पीपल्स पार्टी सिंध जे सदर निसार खोड़े चयो त आमरन जो दौर गुज़री वियो ॿिनि सालनि बाद इलेक्शन थियणी आहे जंहिंखे सूबनि जो शौक़ु आहे इलेक्शन विड़ी न आहे

कचो तेल खणी वेंदड़ पंज ईरानी बैरी जहाजन के अमेरिका पारा तबाह करण की दावा सेंटकॉम ईरानी टैंकर्स से हमले जो वीडियोज भी जारी कर छियों सेंटकॉम मूजिब ईरानी ऑयल टैंकर्स खिलाफ कार्रवाई पासदार इनकलाब अमरीकी बेड़न के निशानों बनाने वाले कोशन बाद कई वही अमरीकी परदेही वजीर मार्क रोबियो भी तेहरान अमरीकी बैरी बेड़न के बीहर निशानों बनाने की

ईरानी मिज़ाइल हमलनि जी तसदीक़ कई आहे। वज़ीर आज़म जी सदारत हेठि फिनांस प्लान 2026-28 बाबति इजलास, पंहिंजो घर स्कीम ज़राअत ऐं SMEs में तरक़ीअ लाइ फिनांसिंग जो जाइज़ो वरितो वियो। शहबाज शरीफ हारनि जे मालियाती वसीलनि ताईं रसाई बिना रंडक यकीनी बणाइण जी हिदायत कंदे चयो त घटि आमदनी वारनि खे सस्ता घर फराहम करणु पहिरीं तरजीह आहे। सिक्योरिटी फोर्सिस जूं बलोचिस्तान जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में कार्रवाइयूं, 11 दहशतगर्द मारिजी विया। ISPR मूजिबि सिक्योरिटी फोर्सिस खारान ऐं वाशिक ज़िलनि में ॻुझे इतलाउ ते ऑपरेशन कयो वियो। ऑपरेशन दौरान भारतीय सरपरस्तीअ में कमु कंदड़ 11 दहशतगर्द मारिजी विया। खारान में कार्रवाई दौरान रोड बंदि करण जी कोशिशि कंदड़ 8 दहशतगर्द मारिया विया। वाशिक में ऑपरेशन दौरान फायरिंग जी ॾे वठि दौरान 3 दहशतगर्दनि खे जहनम भेड़ो कयो वियो। ऑपरेशन दौरान मारिजी वियल दहशतगर्दनि वटां बारूदी मवाद हथ कयो वियो, जॾहिं त सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर शहबाज शरीफ ऐं वफ़ाक़ी घरू वज़ीर पारां दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ु कामयाबु कार्रवाई ते फोर्सिस खे भेटा पेश। दहशतगर्दी जे मुकमल ख़ात्मे वारे अज़म जो बि वर्जा। सेनेट जे इंसानी हक़नि बाबति कमेटी में पिमसाने मीर रज़ा केस जो ज़िक्र। पिमसाने जो केस दाख़िल न थियण ते कमेटी मेंबर्स पारां हैरत जो इज़हार। जांच कमेटीअ जी सिफ़ारिशुनि ते अमल बाबति पुछाणो, मीर रज़ा केस बाबति सुवाल जवाब। कमेटीअ चयो त अवां वर्दी माण्हुनि जी हिफ़ाज़त लाइ पाती आहे, माण्हुनि जूं ॻाल्हियूं मञण लाइ न। मीर रज़ा केस में पुलिस छा कयो, कंहिंखे गिरफ़्तार कयो आहे या न? पुलिस इख़्तियारनि चयो त को बि दॿाउ न आहे। कमेटी इजलास दौरान अमल वली खान ऐं आबिद शिरलीअ में बि झड़पूं थियूं। सिंध विरहाङे वारनि बयाननि ख़िलाफ़ु सिंध बार पारां सुभाणे यूनिटी ॾियारो मल्हाइण जो ऐलान। अदालतुनि जो बि को वकील पेश न थींदो। सिंध बार काउंसिल जो चवणु आहे त सिंध जे वहदत ऐं यकजहतीअ ख़िलाफ़ु कंहिं बि क़दम खे क़बूल न कयो वेंदो। सिंध विरहाङे वारा बयान बर्दाश्त जोॻा न आहिनि। सुभाणे अदालत कारवाई बाइकाट कयो वेंदो। कराची यूनिवर्सिटी जे प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ साकीअ ते तशद वारे केस में वधीक ॿ जवाबदार गिरफ़्तार। केस में गिरफ़्तार जवाबदारनि जो अंगु 5 थी वियो। केस में अली गौर शाह राशिदी जो पुटु कोनैन शाह बि नामज़द। गिरफ़्तार जवाबदारनि में गुलशेर ताज मोहम्मद, ग़ुलाम उमर, इमरान अली ऐं शौकत अली शामिल। पुलिस मूजिबि जवाबदार अली गौर शाह जा मुलाज़िम आहिनि। सिंध जे तइलीम खाते स्कूलनि जे वक़्त में 1-1 यासीन वासी नौजवान सखर में हथियारबंदनि हथां क़तल। लाश इस्पताल मुंतकिल। सखर बाईपास वटि हथियारबंदनि नौजवान मुनीर अहमद पुटु गुल हसन जाफरी खे क़तल कयो। वारसनि पारां जवाबदार गिरफ़्तार करण जो मुतालबो। पुलिस जो चवणु आहे त वाक़िए जो कारण मालूम न थी सघियो, वधीक जांच कई पई वञे। खेरपुर में 4 ॿारनि जी माउ मायरा लाशारी जा कातिल गिरफ़्तार न थियण ख़िलाफ़ु वारसनि जो मुज़ाहिरो ऐं धरणो। ॻोठु बुकरो जे विरहवासिनि केस में मुलविस जवाबदारनि जी गिरफ़्तारीअ लाइ मेराण हाईवे ते टायरनि खे बायूं ॾेई धरणो हयो। मुज़ाहिरीन चयो त औरत जे क़तल केस में नामज़द जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वञे। वार जे भरिसां मामूली ॻाल्हि तां गाॾी बिरादरीअ जे ॿिनि धिरनि में जहिड़ो सिरूं लॻण सबबि नींगरी मारिजी वई। ॻोठु वलीआबाद में गाॾी बिरादरीअ जे ॿिनि धिरनि में जहिड़ो थियो। सिरूं लॻण सबबि 15 वरनि जी नींगरी शकीला गाॾी मारिजी वई। पुलिस जवाबदार निसार गाॾीअ गिरफ़्तार करे वरितो। काज़ी अहमद में लुंडी शाख ऐं दौलतपुर शाख में ज़रई पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ु पुछड़े जे आबादगरनि जो एहतजाज। शाखनि जे पुछड़ ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो। आबादगरनि चयो त आपाशी अमलदार मुंड जी ज़मीन बासर ज़मीनदारनि खे पाणी विकिरो करे रहिया आहिनि। फ़सुल बचाइण लाइ पुछड़ ताईं पाणी पहुचायो वञे। सखर मां स्कूल वेंदे 13 वरनि जी नींगरी मुबैना तौरु अॻवा केस दाख़िल। आबाद थाणे जे अध ॻोठु आबाद इलाइक़ा जे रहवासिन 13 वरनि जी नींगरी इकरा मुबैना तौरु अॻवा थी वई। नींगरीअ जे ॾाॾे जे फरियाद ते 4 जवाबदारनि अब्दुल करीम उर्फ माणिक खोसो, रियाज़ खोसो, फहद खोसो ऐं फैसल खोसो ख़िलाफ़ु केस दाख़िल। कलोई वेझो प्राइमरी स्कूल बाह जे लॻण सबबि सामान सड़ी रख थी वियो। ॻोठु अहमद जमारो में प्राइमरी स्कूल खे बाहि लॻण सबबि समूरो रिकॉर्ड ऐं सामान सड़ी वियो। इलाइक़े वासनि मूजिबि बाहि

0: ऐं सिंध जे क्लासिकल रागी उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जे विछोड़े खे शाहिद अलीअ वरिया विहामी विया। ख़ानदान जे फर्दनि शागिर्दनि ऐं मदाहनि जी टंडरियादम में उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जी मज़ार ते हाज़िरी। गुलनि जी चादर चाढ़े भेटा पेश कई। उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जा ॻायल गीत अॼु बि झर जंग मशहूरु बणियल।
1: सोलर ऐं बैटरी ते हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में टे ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस, साथ ज़िंदगी भर का।
2: दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिकने वाली पाकिस्तानी प्रोडक्ट फाइज़र ब्यूटी क्रीम।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है एनपीएस 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सिंध के माथे का झूमर,
3: DFM 88 नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज़।

दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

अचो थियल खड़ी वेंदड़ पंज ईरानी पहिरीं जहाज़नि खे अमरीका पारां तबाह करण जी दावा। सेंटकॉम ईरानी टैंकर्स ते हमलनि जूं वीडियोज़ बि जारी करे छॾियूं। सेंटकॉम मूजिब ईरानी ऑयल टैंकर्स ख़िलाफ़ कार्रवाई पासा इनकलाब पारां अमरीकी ॿेड़नि खे निशानो बणाइण वारनि कोशिशनि बाद कई वई। अमरीकी पटेई वज़ीर मार्को रुबियो बि चयो आहे त तेहरान अमरीकी पहिरीं ॿेड़नि खे ॿीहर निशानो बणाइण जी कोशिश कई ते ईरान जा समूरा ऑयल टैंकर्स तबाह कया वेंदा। ऑयल टैंकर्स ते अमरीकी हमलनि बाद ईरान जो बि अमरीकी हथफनि ते जवाबी वार। उर्दन में अमरीकी अॾनि खे निशानो बणायो। आबना हुर्मुस में 10 खां वधीक ॿेड़नि खे निशानो बणाइण जी दावा। रूसी मीडिया मूजिब ईरानी फ़ौज उर्दन जे शहर अल रज़क में क़ाइम अमरीकी अॾे खे निशानो बणायो। अमरीकी पहिरियां जे ॿिनि डिज़ास्टर्स खे बि निशानो बणायो वियो। पासारनि इनकलाब चयो आहे त उर्दन में अमरीकी अॾे ते कार्रवाई दौरान अमरीकी जहाज़नि ऐं हैंगर्स खे वॾो नुक़सान पहुतो आहे। उर्दन पारां ईरानी मिज़ाइल जे हमलनि जी तसदीक कई वई। हीउ इस्पताल आहे या मज़ाक? एच आई वी पकड़िजी वियो ऐं इस्तेमालु थियल सिरनि जूं ॿीहर इस्तेमालु कयूं वयूं।

पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
2: ढाडो सुठो
1: जीए FM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

पचोतल खणी वेंदड़ पंज ईरानी बहरी जहाज़नि खे अमरीका पारां तबाह करण जी दावा। सेंटकॉम ईरानी टैंकर्स ते हमलनि जूं वीडियोज़ बि जारी करे छॾियूं। सेंटकॉम मूजिबि ईरानी ऑयल टैंकर्स ख़िलाफ़ कार्रवाई पासा इंकलाब पारां अमरीकी बेड़नि खे निशानो बणाइण वारियुनि कोशिशनि बाद कई वई। अमरीकी पंहिंजे वज़ीर मार्को रूबियो चयो आहे त तेहरान अमरीकी बहरी बेड़नि खे ॿीहर निशानो बणाइण जी कोशिश कई त ईरान जा समूरा ऑयल टैंकर्स तबाह कया वेंदा। ऑयल टैंकर्स ते अमरीकी हमलनि बाद ईरान

इस्तेमाल थियल सिरनि जूं ॿीहर इस्तेमालु कयूं वयूं। 14 ॿार फोत थिया आहिनि, पोइ बि FIR छो दाख़िल न थी आहे? सेनेट इंसानी हक़नि बाबति कमेटी पारां पीएम्स सारे ते सख़्तु कावड़ जो इज़हार। चेयरपर्सन पीएम्स इंतज़ामिया खां पुछाणो कयो त मोतली खां पोइ ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कहिड़ी कार्रवाई कई वई ऐं जांच कमेटी जी सिफ़ारिशुनि ते केतिरो अमल कयो वियो। अव्हां खे अंदाज़ो आहे त हिकु माउ कहिड़ी तकलीफ़ मां गुज़रे थी? हेमल वली ख़ान चयो त छा SHO खे अञा ताईं वाकिए जी ख़बर न आहे? केतिरनि ई केसनि में नामालूम माण्हुनि ख़िलाफ़ बि FIR दाख़िल थी वेंदी आहे, पोइ हिन केस में ईअं छो नथो कयो वञे? अवाम आख़िर कंहिं वटि वञे? आबिद शेर अली बि चयो त हिन मुल्क में न जज़ा आहे, न सज़ा ऐं न ई को निज़ाम। जेकॾहिं मां इस्लामाबाद जा ॿ इस्पताल बि संभाले नथा सघो त इहा ॿुॾी मरण जी ॻाल्हि आहे। वज़ीर आज़म जी सदारत हेठि फिनांस प्लान 2026-28 बाबति इजलास। पंहिंजो घर स्कीम ज़रात ऐं SMEs में तरक़ी लाइ फिनांसिंग जो जाइज़ो वरितो वियो। शहबाज़ शरीफ आर्यन जे मालियाती वसीलनि ताईं रसाई बिना रंडक यकीनी बणाइण जी हिदायत कंदे चयो आहे त घटि आमदनी वारनि खे सस्ता घर फराहम करणु पहिरीं तरजीह आहे। सिक्योरिटी फोर्सेस जूं बलोचिस्तान जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में कार्रवाइयूं। 11 दहशतगर्द मारिजी विया। ISPR मूजिब सिक्योरिटी फोर्सेस खारान ऐं वाशिक ज़िलनि में गुझे इतलाते ऑपरेशन कयो। ऑपरेशन दौरान भारतीय सरपरस्ती में कम कंदड़ 11 दहशतगर्द मारिजी विया। खारान में कार्रवाई दौरान रोड बंदि करण जी कोशिश कंदड़ 8 दहशतगर्द मारिया विया। वाशिक में ऑपरेशन दौरान फायरिंग जी ॾे वठि दौरान 3 दहशतगर्दनि खे जनम बीड़ो कयो वियो। ऑपरेशन दौरान मारिजी वियल दहशतगर्दनि वटां बारूदी हथियार ऐं बारूदी मवाद हथ कयो वियो। सदर वज़ीर आज़म ऐं वफ़ाक़ी घरू वज़ीर पारां दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाई ते फोर्सेस खे भेटा पेश।

तव्हां पुलिस जी वर्दी माण्हुनि जी हिफ़ाज़त लाइ पाती आहे, माण्हुनि जूं ॻाल्हियूं मञण लाइ न। पीर रज़ा केस में अवां छा कयो? छा कंहिंखे हथकड़ियूं लॻायूं? सेनेट जी स्टैंडिंग कमेटी में सिंध पुलिस जे अमलदारनि खां सख़्त पुछाणो। कमेटी पुछो त मीर रज़ा क़तल केस में जिन माण्हुनि ग़लति रिपोर्ट ॾिनी, इन्हनि ख़िलाफ़ कहिड़ी कारवाई कई वई? पुलिस अमलदारनि चयो त पुलिस मीर रज़ा जे ख़ानदान सां मुकमल सहकार कयो आहे ऐं केस बाबति पुलिस ते कंहिं बि क़िस्म जो दॿाउ नाहे। आबिद शेर अली चयो त जेकॾहिं पुलिस खे कमु करणो हुजे त क़बर मां बि मोल खे कढी आणे सघे थी। कानून हरकत में न ईंदो त गुंडा अहिड़ी ही रीति गुंडागर्दी कंदा रहंदा। कुरत लेन मरी चयो त एस एच ओ खे मुअतल करण बदिरां जेल में हुजणु घुरिजे हा। पुलिस अमलदारनि एतिराफ़ु कयो त एस एच ओ खां ग़फ़लत थी। एस एच ओ डी एस पी खे मुअतल कयो वियो आहे। कराची यूनिवर्सिटी जे प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ साकी ते तशद्दुद वारे केस में वधीक ॿ जवाबदार गिरफ़्तार। केस में गिरफ़्तार जवाबदारनि जो अंग पंज थी वियो। केस में अली गोहर शाह राश्ती जो पुट कोनेन शाह बि नामज़द। गिरफ़्तार जवाबदारनि में गुलशेर ताज मोहम्मद, ग़ुलाम उमर, इमरान ऐं शौकत शामिल। पुलिस मूजिबि जवाबदार अली गोहर शाह जा मुलाज़िम आहिनि।

कराची जी अदालत गुल प्लाजा पाकिस्तान जी जांच लाइ जे आई टी जोड़ण वारी ज़बानी दफ़ा सद कंदे चयो आहे त जे आई टी जोड़ण मैजिस्ट्रेट जे इख़्तियार में न आहे। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साउथ में ॿुधणी दौरान तनवीर पास्ता समेत ॿियनि जवाबदारनि खे पेश कयो वियो। तनवीर पास्ता चयो त असांजा दुकानदार माण्हुनि खे बचाईंदे फोत थिया, जांच दौरान बि मुकमल सहकार कयो पर पुलिस असांखे ई जवाबदार बणाए छॾियो। जवाबदारनि जे वकील चयो त पुलिस समूरनि इदारनि खे क्लीन चिट ॾेई पुराणो चालान ॿीहर अदालत ते पेश कयो आहे। जांच लाइ जे आई टी जोड़ी वञे ॿुधणी 18 सेप्टेम्बर ताईं मुलतवी। ईंदड़ ॿुधणी ते केस जे चालान जी मंज़ूरी बाबति फ़ैसिलो कयो वेंदो। सिंध जे तालीम खाते स्कूलनि जे वक़्त में 1 कलाक घटिताई करे छॾी। नोटिफिकेशन जारी। स्कूलनि जी हाणे मोकल 2:30 वॻे बदिरां 1:30 वॻे थींदी।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: Japan. Tu na mera hater, tu to mera fan.
1: White Age Beauty Cream, 5-day beauty plan ke saath. Aloe vera, vitamins aur avocado ki bharpoor khoobiyan, jiske minerals skin mein fully absorb ho jaye. Skin ko fair aur fresh banaye. Aapko de beta nikhra nikhra chehra. White Age Beauty Soap se mile. Chamakta nikhar taazgi ke saath. White Age Beauty Cream, glowing skin ka raaz. A product of Biocon International Pakistan.
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज.

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है एनपीएस तीन की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

रहे हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: It's 8 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: मैं पूरी टीम टेटी ढाई पंज ओवर्स में 133 रन से ढेर थी वही. सऊद शकील 43, मोहम्मद अब्बास 21 ए रज़ाउल्लाह 11 रन ठाहे कौमी टीम जी के हद ताई इज़्ज़त बचाने जी कोशिश कई. बाकी रांदीगरन डबल फिगर में भी दाखिल न थी सकिया. अजोकी मैच में विकेट कीपर गाज़ी गोरी फास्ट बॉलर रज़ाउल्लाह इमरान रंधावा डेब्यू कयो. मेज़बान टीम जी पहिरीं इनिंग्स में बैटिंग जारी.
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
4: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज.
5: GAFM 88
4: नेटवर्क,
6: सिंध की आवाज.

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: rise to introduce the government bill number 32 of the approved 2026, a bill to amend the Sindh Local Government Act 2013.
1: I rise to move a motion that the special committee,
2: the Sindh Local Government Amendment Bill 2026, and report back to the assembly within 1 week. Now I put the motion to the house. Those who are for the motion may say aye, and those against it may say no. I rave it, and the motion is carried.
3: मेयर ऐं चेयरमैन मुदो ख़त्म थियण खां पोइ बि एडमिनिस्ट्रेटर तौर कम कंदा। डिप्टी मेयर ऐं वाइस चेयरमैन लाॻापियल काउंसिल जा कन्वीनर हूंदा। मकानी चूंडनि जो अमल काउंसिल जो मुदो मुकमल थियण खां 120 ॾींहं अॻु शुरू कयो वियो। न थियण जी सूरत में मेयर ऐं चेयरमैन एडमिनिस्ट्रेटर तौर कम जारी रखंदा। चेयरमैन ऐं वाइस चेयरमैन ख़िलाफ़ बेतमादी रेत बबा खे 3 जी अक्सरियत सां मंज़ूर थींदी। कराची मेट्रोपोलिटन कार्पोरेशन जो चीफ एग्जीक्यूटिव मेट्रोपोलिटन कमिश्नर हूंदो। सिंध हुकूमत लोकल बॉडीज़ एक्ट 2013 में तरमीम जो बिल सिंध असेंबली में पेश करे छॾियो। पार्लियामेंट सेक्रेटरी कासिम सिराज सूमरो पारां पेश कयल बिल ते गौर लाइ 12 रुकनी कमेटी क़ाइम। सूबाई वज़ीर ज़ियाउल हसन अंजार जी तजवीज़ ते जुड़ियल ख़ुसूसी कमेटी 1 हफ़्ते अंदर रिपोर्ट पेश कंदी। तरमीमी बिल में यूनियन म्यूनिसिपल ऐं टाउन सतह ते मसालती फोरम क़ाइम करण जी तजवीज़। बिल जे मसवदे मूजिबि मसालती फोरम बिरादरी जे तकरारनि जो हल ॻोल्हींदो ऐं मक़ामी SHO UC चेयरमैन सां राब्ते में रहंदो।
4: अब मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि जिसने असेंबली में खड़े होकर रेजोल्यूशन पर वोटिंग के वक्त वॉकआउट करना मुनासिब समझा, या जिस पार्टी ने असेंबली में आना मुनासिब नहीं समझा, तो मैं उनको भी प्लीज पकड़ो जैसा समझूंगा। अगर पकड़ो कुछ नहीं बोल रहा तो उसका भी वही किरदार है जो MQM और PTI।
3: सूबनि बाबति पीर पघारे जो किरदार बि MQM वारो आहे। कंहिंजी ख़्वाहिश या मर्ज़ी ते रेफरेंडम नथो थी सघे, आइन रेफरेंडम बाबति वाज़े आहे। पीपल्स पार्टी सिंध जे सदर निसार खोड़े चयो आहे त आमरनि जो दौर गुज़री वियो, 2 सालनि बाद इलेक्शन थियणी आहे, जंहिंखे सूबनि जो शौक़ु आहे इलेक्शन विड़े ठाहे।

ईरान ऐं अमरीका विच में चिकताण वधी वई। अमरीका पारां कचो तेल खणी वेंदड़ पंज ईरानी बहरी जहाज़नि खे तबाह करण जी दावा। सेंटकॉम ईरानी टैंकर्स ते हमलनि जूं वीडियोज़ बि जारी करे छॾियूं। सेंटकॉम मौजिब ईरानी ऑयल टैंकर्स ख़िलाफ़ कार्रवाई पासदारनि ऐं इनकलाब पारां अमरीकी ॿेड़नि खे निशानो बणाइण वारियुनि कोशिशनि बाद कई वई। अमरीकी पटी वज़ीर मार्को रूबियो बि चयो आहे त तेहरान अमरीकी बहरी ॿेड़नि खे ॿीहर निशानो बणाइण जी कोशिश कई त ईरान जा समूरा ऑयल टैंकर्स तबाह कया वेंदा। ऑयल टैंकर से अमरीकी हमलन बाद ईरान जो भी अमरीकी अदफन से जवाबी वार। उर्दन में अमरीकी अडन के निशानों बढ़ाया। अबना हरमुस में भी 10 का वधिक बेड़न के निशानों बढ़ने की दावा। रूसी मीडिया मूजिब ईरानी फौज उर्दन के शहर अल अरजक में कायम अमरीकी अडे के निशानों बढ़ाया। अमरीकी बहरिया के बिन डिजास्टर आइस के भी निशानों बढ़ाया वो। पासदारन इनकलाब उर्दन में अमरीकी अडे से कार्रवाई दौरान अमरीकी जहाजन ए हैंगर्स के वो नुकसान पौतो है। उर्दन पारा ईरानी मिजाइल हमलन की तस्दीक कई वही। वज़ीर-ए-आज़म जी सदारत हेठि फाइनेंस प्लान 2026-28 बाबति इजलास। पंहिंजो घर स्कीम ज़रात ऐं SMEs में तरक़ी लाइ फाइनेंसिंग जो जाइज़ो वरितो वियो। शहबाज़ शरीफ आर्यन जे मालियाती वसीलनि ताईं रसाई बिना रंडक यकीनी बणाइण जी हिदायत कंदे चयो आहे त घटि आमदनी वारनि खे सस्ता घर फराहम करणु पहिरीं तरजीह आहे।

की अस्पताल आहे या मज़ाक एच आई वी पकड़जी वियो ऐं इस्तेमाल थियल सिरिंजूं ॿीहर इस्तेमाल कयूं वयूं। 14 ॿार फोत थिया आहिनि, पोइ बि एफ आई आर छो दाख़िल न थी आहे? सेनेट जे इंसानी हक़नि बाबति कमेटी पारां पिम्स इंसानी ते सख़्त कावड़ जो इज़हार। चेयरपर्सन पिम्स इंसामिया खां पुछाणो कयो त मुअतली खां पोइ ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कहिड़ी कार्रवाई कई वई ऐं जांच कमेटी जी सिफारिशनि ते केतिरो अमल कयो वियो। अव्हां खे अंदाज़ो आहे त हिकु माउ कहिड़ी तकलीफ़ मां गुज़रे थी? मेमल वली ख़ान चयो त छा एस एच ओ खे अञा ताईं वाकिए जी ख़बर नाहे? केतिरनि ई केसनि में नामालूम माण्हुनि ख़िलाफ़ बि एफ आई आर दाख़िल थी वेंदी आहे, पोइ हिन केस में ईअं छो नथो कयो वञे? अवाम आख़िर कंहिं वटि वञे? आबिद शेर अली बि चयो त हिन मुल्क में न जज़ा आहे न सज़ा ऐं न ई को निज़ाम। जेकॾहिं मां इस्लामाबाद जा ॿ इस्पताल बि संभाले नथा सघो त उहा ॿुॾी मरण जी ॻाल्हि आहे।

इस्लामाबाद में रावल डंड के किनारे कायम पाकिस्तान नेवी फॉरम्स नेवी सेलिंग क्लब के गैर कानूनी करार दियण वारो फैसलो कल अदम करार नेवी सेलिंग क्लब की इमारत चाहण बाबत फैसलो पिण कल अदम इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सफ़े ते बदल मुख्तसर फैसलो जारी कंदे अदालत अगोणे नेवी चीफ जफर महमूद अब्बासी खिलाफ मिसकंडक्ट फौजदारी कार्रवाई करण बाबत फैसलो पिण खत्म कर छो साल 2022 में अगोणे चीफ जस्टिस जस्टिस अतर मिनल्ला जी सिंगल बेंच पारा क्लब के गैर कानूनी करार दिनो हो जस्टिस इनाम अमीन मिनास जस्टिस शाहरुख अर्जुमंद फैसले खिलाफ दाखिल दरख्वास्त मंजूर कर वरतियों अदालत है सिंगल बेंच हुक्म कलदाम करार दियण के सबबन से बदल तफसीली फैसलो बाद में जारी किया वो सिंध के मकानी खाते में ओपीएस से ऑफिसर की मुकररियन बाबत चीफ सेक्रेटरी सेक्रेटरी एस एन जी ए डी बेन धुरियन के नोटिस जारी सिंध हाई कोर्ट के आइनी बेंच पारा 24 सेप्टेम्बर से जवाब तलब दरख्वास्त गुजार के वकील चीफ म्यूनसिपल कमिश्नर के अहदे से नॉन कैडर ऑफिसर के मुकर किया है सूबे में असल ऑफिसर के नजरअंदाज कर तरबियत वठंदड़ अठ ऑफिसर के ओपीएस से मुकर किया है म्यूनसिपल ऑफिसर के संदन लागापियल अहदन से मुकर किया सिंध के तालीम खाते स्कूल के वक्त में कलाक घटताई कर छी नोटिफिकेशन जारी स्कूल के हाँ मोकल 28 वगे 15:30 वगे कराची में डीजी नवादरात अब्दुल फतेह शेख डिप्टी डायरेक्टर आबिद चांडो में प्रोमोशन के मामले तां जेड़ो एक बे लतन मुक्कन जो वसकारो कोट बेसन थाने ते केस दाखिल थियण का पोए पुलिस आबिद चांडो के गिरफ्तार करे वरतो अब्दुल फतेह शेख चयो आए ता आबिद चांडो ऑफिस में अची हमलो कयो के जो भी प्रोमोशन नाहे रोकियो वियो मामलो सुप्रीम कोर्ट में हलंदड़ आए पेरिया भी ऑफिसर के धमकियों देण ते आबिद चांडो के मुअत्तल कयो वियो हो कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ साकी के तशद्दुद वारे केस में जवाबदार गिरफ्तार केस में गिरफ्तार जवाबदार जो अंग पंज थी वियो

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान जी एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

सुख जे चाही थो तू सरता वैरागन जी वाट वठी हल। सुख जे चाही थो तू सरता वैरागन जी वाट वठी हल। भूराई के भाकुर पाए सियाणप जो संसार छॾे ॾे। कुंवारी वनवाह में वेठल उनखे पकड़े आयो आछा। कुंवारी वनवाह में वेठल उनखे पकड़े आयो आछा। रात मछन में मातम हो पुट सियाणो थी बस यार छॾे ॾे। रात मछन में मातम हो, रात मछन में मातम हो पुट सियाणो थी बस यार छॾे ॾे। हाणे छोरा प्यार छॾे ॾे।

गुलन जी का गाल आ प्यारा सीनो हरदम हाजिर आहे गुलन जी का गाल आ प्यारा सीनो हरदम हाजिर आहे यार जो आही सामू अचनी यार जे आही सामू अचनी पुट जे पोयां वार छडे दे सियाणो थी प्यार छडे दे नब्ज तपासे वेज वराण्यो हाणे छोरा प्यार छडे दे जीअण जग में चाहीं थो जे दोस्त मिठो दिलदार छडे दे खूबसूरत शायरी प्यारे प्यारी दिलरुबा दिलबर दोस्त सज्जाद महर जी प्रोग्राम में शामिल कई से इन सा गड खुण सारियूं अञा शायरियूं में शामिल कंदा से म्यूजिक ट्रैक भी हुंदा अमां जो लाइव कॉल्स भी हुंदियूं असा प्रोग्राम जी शुरुआत में अमां सा गाल बोल कंदा हूं ऐ 15 खां 20 मिंटन में आफ्टर ब्रेक में असा अमां जी कॉलिंग जोका अटेंड करण जो सिलसिलो शुरू थींदो आहे अमां जी कॉल्स कंटीन्यूअसली असां खे अचनि पियूं बेहद इंतज़ार रहंदो आहे अमां जी कॉल्स जो पर जेकॾहिं अमां सां का ॻाल्हि ॿोल न थींदी का दिलि जी ॻाल्हि न थींदी सिर्फ़ु जेको आहे त फ़ोन कॉल अटेंड थींदी त ॿिया सभई दोस्त जेका त प्रोग्राम जे उन पैटर्न उन मज़े खां रहिजी वेंदा

प्रोग्राम में शामिल कंदासीं। बरकत भट्ट जी खूबसूरत आवाज में खूबसूरत गीत तू मुझो सनम आहीं मां तुझो सनम आहीं।

वेलकम बैक प्रोग्राम दिल जी गाल संगत आऊं है आबिद चौहान आई आवां बुधी रहा हूं GAFM नेटवर्क दोस्तों हियर वक्त थियो है एगड़ी नंडड़ी कमर्शियल ब्रेक जो वरी वरंदा से वापस बुधंदा रहो GAFM नेटवर्क

0: It's 9:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए. आर्श ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्श ब्यूटी क्रीम.
0: अपना शहर, अपना घर, सखर और सखर की आवाज, GFM 88.
2: तो ख्वाब आए डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बनजन तो आए एक बेहतरीन मौको. सखर जो मोतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में इन सेशन लाइ दाखिला जारी है. 4 साल जा डिग्री प्रोग्राम GBSN, GBSM, 5 साल जो प्रोफेशनल प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी DPD, 5 साल जा डिप्लोमा प्रोग्राम LHV, CMW, CNA. खास सहूलतों स्कॉलरशिप मौजूद. 5 साल के कोर्सेज में एडमिशन बिल्कुल फ्री. जरे तो DPD प्रोग्राम में सिर्फ ₹10,000 दाखिला फीस. आई फीस सेमेस्टर सिर्फ ₹60,000. इतने तवा के मिलंदा एयर कंडीशन क्लासरूम, जदीद लेबोरेटरीज, मुकमल लाइब्रेरी, तजुर्बेकार फैकल्टी, हॉस्टल, पिक एंड ड्रॉप, आई फिजियोथेरेपी, OPD जी बेहतरीन सहूलत. ये इधारो सिंध हुकूमत के हेल्थ डिपार्टमेंट का मंजूर शुदा एंड पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल का तस्लीम शुदा लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जो डिग्री याफ्ता आहे. याद रखो सीट्स महदूद आहिन, तह करे पंजे रोशन मुस्तकबिल लाए अजी दाखिला वठो. एक खास गाल इते मेडिकल जा शॉर्ट कोर्सेस, OT, हेल्थ टेक्नीशियन एंड बिया सब कोर्सेस पिण थींदा आहिन. एड्रेस सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, Sector 5, सखर टाउनशिप, मेन बाईपास रोड, सखर. राबतो 07115635642 आई 03108166111.
3: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो. पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम. अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग. इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक. रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट. हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान. वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं. बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप. वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु. वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
4: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज.
5: GAFM 88
4: नेटवर्क,
0: सिंध की आवाज़.

0: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

0: वेलकम बैक प्रोग्राम दिल जी गाल संग दाऊ आया अब चौहान आया मां बुली रायो जी एफएम नेटवर्क दोस्तों बिल्कुल ही हर वक्त हो है अमा जो कॉलिंग अटेंड कर जो असा जो लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488 इन ते अमा असा के व्हाट्सएप वसीले शॉर्ट टेक्स्ट वॉइस नोट भी मोकले सको था ए असा के एसएमएस करण लाए 8881 ते एसएमएस पण करे सको था असा सा कॉलर शामिल है कॉल शामिल कंदा से प्रोग्राम में अस्सलाम वालेकुम के प्यारा किथा खा السلام علیکم کیر پیارا کتا گا ہلو
1: ہلو ویلکم استاد مولا خان سوڈو خان زرداری
0: سوڈو خان جکرانی ویلکم ولیکار خوش آمدید پیارا پروگرام میں
1: سوڈو خان زرداری جی سر
0: سائیں ویلکم ولیکار خوش آمدید प्रोग्राम क्यों भी लगे
1: जबरदस्त प्रोग्राम चार चंद जबरदस्त शायरी
0: इन में अवां भी पंहिंजी का चूंड शायरी हींअर लाइव कॉल वसीले असांखे ॿुधाए सघो था दोस्तनि जी हूंदी आहे शामिल सॼी शायरी मुंहिंजी तरह हूंदी आहे मूं नाचीज जो बि हिकु अधु को शेर हूंदो आहे बाक़ी दोस्तनि जी शायरी बि शामिल कंदा आहियूं नाले वारनि शायरनि जी शायरी पिण शामिल कंदा आहियूं अवां बि असांजे प्रोग्राम दिलि जी ॻाल्हि में पंहिंजी दिलि जी ॻाल्हि करे सघो था छा चवणु चाहींदव
1: बसि असांजी दिलि जी ॻाल्हि इहा ई आहे त जेको आहे सो तव्हांजो प्रोग्राम ज़बरदस्त आहे वण पिया कयूं ऐं ॿुधंदड़ ॿुधनि पिया ऐं जेको आहे सो सभिनि दोस्तनि खे असांजे तरफ़ां यादि नज़र तव्हांखे तव्हांजी ऐं पंहिंजी टीम खे
0: वरी महिरबानी वालेकुम सलाम
1: साखी रुकेश सर जेका असां ममताज़ लाचारी जी फोन ॿुधायो मौला सां आबाद कंदे न ॿुधाईंदो त बि ख़ुशि हूंदो
0: शामिल करे छॾियूं था प्रोग्राम में प्रोग्राम ॿुधंदा रहो लाज़मी अवांजी फरमाइश पूरी थींदी दोस्तनि जा नाम शामिल करणु चाहींदो जी वरी महिरबानी प्यारा कुर्ब थैंक यू

असां सां शामिल आहिनि। अस्सलाम वालेकुम, केर पैरा किथां खां? हैलो, कॉल अटेंड न करे सघिया आहियूं या न थी सघी आहे, अनफॉर्चुनेटली कॉल शामिल कंदासीं। अवां जूं मुहबतूं, अवां मुसलसल कंटिन्यूसली असांखे कॉल करे रहिया आहियो, कॉलिंग जो सिलसिलो कंटिन्यू रहंदो। असांजो लाइव कॉलिंग नंबर आहे 03000113488। अवां असांखे टैक्स मैसेज पिण करे सघो था, असांखे SMS करण लाइ 8881 ते अवां पंहिंजो मैसेज करे सघो था। ऐं असांजे फेसबुक ते जेका पोस्ट शेयर थियल आहे उन ते पिण कमेंट करे सघो था, प्रोग्राम जे हवाले सां फीडबैक बि ॾेई सघो था।

प्यारे मुसफ़र चौहान जो इंतहाई खूबसूरत नज़म शामिल कंदासीं प्रोग्राम में। उनवान आहे महबूब डिक्टेटर। चरीअ सां चाहु आहे मुंहिंजो, चरी वी साहु आहे मुंहिंजो। चरीअ सां चाहु आहे मुंहिंजो, चरी वी साहु आहे मुंहिंजो। चरीअ खे को त समुझाए, चरीअ में साहु आहे मुंहिंजो। करे हर रोज थी जेड़ा, कदें कहड़ा बुधाया मां भला कहड़ा। जिदी कहें बार अड़े जहड़ी, अचे थी होड ते जहें पल। सफा एहसास खां खाली, रहम ए क्यास खां खाली। लगे फिरौन थी तहें पल, लगे ही हूँ बहू जहड़ी। ज़ियाउल हक ए हिटलर, मुझी महबूब डिक्टेटर, मुझी महबूब डिक्टेटर। सिंधुअ जे छोलड़नि जहिड़ी, मिठीअ जे मोरड़नि जहिड़ी। भिटाई जे सुरनि वर्गी, मधुर संगीत ऐं सरगम। दंभूरो तार आमूलै, समूरे साह खां प्यारी। रुए अरवाह खां प्यारी, सॼो संसार आमूलै। अलाहू लाडली आहे, मखण जी चाडड़ी आहे। खिले त फूल महकाए, रोए त रात जागाए। खिले त फूल महकाए, रोए त रात जागाए। मिले त मोर रक्षां थियन, छिजे त साह सहकाए। रुसण कंहिंखां सिखी आहे, कुहण कंहिंखां सिखी आहे। इहा मूंखे ख़बर नाहे, ठहे थी हू हक़ीक़त में, ठहे थी ख़्वाब में अक्सर। ड्रहे थी हू हक़ीक़त में, ठहे थी ख़्वाब में अक्सर। नकी थी प्यार सां समझे, सही थी कोन को, सहे थी कोन को दड़को। ठके ठोके ऐं खड़काए, वठे वहंवार थी पंहिंजो। अड़ीअ ते बस अड़ी आहे, मिज़ाजन चिड़चिड़ी आहे। हू उबती खोपड़ी आहे, सड़े थी बर्फ़बारीअ में। कढ़े थी सर्द सियारे में, ठरे थी आग भड़काए। दिलनि जा चैन तड़पाए, थकावट ॾींहुं सारे जी। बग़ावत ओड़े पाड़े जी, सुबुह ऐं शाम धारे जो। वेही पोइ वांद काईअ में, चंडी थी छोहड़ा सा, छंडे थी छोहड़ा सारा। अंधा ऐं के मंडा काणा, हाणे इल्ज़ाम थी मूं ते। चरीअ खे को त समुझाए, ईअं मूंखे न तड़पाए। संदसि में साहु आहे मुंहिंजो, चरी वे साहु आहे मुंहिंजो।

भगवान जहड़ी आ रही मो राम जहड़ी आ, मुले भगवान जहड़ी आ रही मो राम जहड़ी आ, मुले काबो आहे किबलो नकी मुखा जुदा आहे, मुझी महबूब डिक्टेटर मुझे लय खुद खुदा आहे, खुदा आखिर खुदा आहे, खुदा के केर समझाए, खुदा के केर समझाए।

0: देखिए दिल की बात जो है हो या दिल जी गाल, तो वो किसी लैंग्वेज की मोहताज नहीं होती, वो होती है फीलिंग्स, एहसास। तो एहसास किसी जुबान का मोहताज नहीं होता। एहसास जो है कि लफ्जों से जब बयान न हो तो वो आंखों की जुबान भी उसे कह देती है। किसी शायर ने क्या खूबी कहा कि नजर ऊंची की तो दुआ बन गई, और नजर नीचे की तो हया बन गई, नजर तिरछी की तो अदा बन गई, और नजर फेर ली तो कजा बन गई। कॉलर हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम, केयर के था। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वा सलाम, केयर सही के था। वेलकम भलीगा प्रोग्राम में पैरा। मेहरबानी अवां प्रोग्राम बुधो पिया आए असा के कॉल
1: साल कट
0: कॉल हाने कंटिन्यू कॉल खणबी अवां जी फरमाइश पूरी थी। अच्छा। जी जी अवां सा गालू थिंदी आए फरमाइश पूरी थिंदी कॉल थिंदी हाने शामिल। जी जी चा चवण चाहिंदो अवां जी कॉल शामिल थी वे अवां जी शिकवा शिकायत
1: बनो थी तमाम बेहतरीन असा एक शेर बुधाइंदा
0: बुधायो जी दोस्त मिठा दिलदार आलम सब हबात क्या बात है। तमाम जबरदस्त प्यारी दुआ है शाह साहब जी, तो सजे आलम के संद सा गरु गर सजे आलम जे लाए दुआ। शामिल कंदासे पंहिंजी प्लेलिस्ट में, अवां फरमाइश करे छॾियो पो ॿुधंदारो प्रोग्राम हलाईंदासे। जी जी शमन जो कहिड़ो गीत पिया चओ? ठीकु आहे ठीकु आहे, शमन जो असां शामिल करे छॾियूं था को बि ट्रेक ऐं दोस्तनि जा नाम खणणु चाहींदो। वॾी महिरबानी, लव यू, थैंक यू, लख लाइक कुर्बान।

दोस्तों कॉल्स का सिलसिला भी कंटिन्यू जारी रहेगा और आपकी फरमाइशें भी हमारी जिम्मेदारी है। तो मेल्स की तो कॉल ज्यादातर हमारे प्रोग्राम में 99% मेल्स की कॉल आती है, कोई आधा एक परसेंट जो है कि किसी फीमेल के सडनली कॉल आ जाए, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनकी फरमाइश पूरी ना की जाए। तो हम इंजॉय करेंगे सभी मिल के नाहिद अख्तर की खूबसूरत आवाज में शब-ए-गम मुझसे मिलकर।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सदर आसिफ अली सरदारी लंदन का ने वापस रवाना। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर टीपू उस्मान सदर के अलविदा के सदर आसिफ अली सरदारी साफियन जे सवालन जा जवाब दींदे
2: Introduce the government bill number 32 of the 2026 a bill to amend the Sindh local government.
3: I rise to move a motion that the special committee
4: to send local government amendment bill 2026 and report back to the assembly within 1 week. Now I put the motion to the house. Those who are for the motion may say aye and those against it may say no. I rave it and the motion is carried.
1: चेयरमैन मुद्दो खत्म थियण खां पोइ बि एडमिनिस्ट्रेटर तौर कम कंदा। डिप्टी मेयर ऐं वाइस चेयरमैन लागापियल काउंसिल जा कन्वीनर हूंदा। मकानी चूंडनि जो अमल काउंसिल जो मुद्दो मुकमल थियण खां 120 ॾींहं अॻु शुरू कयो वेंदो। चूंडू न थियण जी सूरत में मेयर ऐं चेयरमैन एडमिनिस्ट्रेटर तौर कम जारी रखंदा। चेयरमैन ऐं वाइस चेयरमैन ख़िलाफ़ भेटवादी रेत बबांगी 3 जी अक्सरियत सां मंज़ूर थींदी। कराची मेट्रोपोलिटन कारपोरेशन जो चीफ एग्जीक्यूटिव मेट्रोपोलिटन कमिश्नर हूंदो। सिंध हुकूमत लोकल बॉडीज एक्ट 2013 में तरमीम जो बिल सिंध असेंबली में पेश करे छॾियो। पार्लियामानी सेक्रेटरी कासिम सिराज सोमरो पारां पेश कयल बिल ते गौर लाइ 12 रुकनी कमेटी क़ाइमु। सूबाई वज़ीर ज़ियाल हसन अंजार जी तजवीज़ ते जुड़ियल ख़ुसूसी कमेटी 1 हफ़्ते अंदरि रिपोर्ट पेश कंदी। तरमीमी बिल में यूनियन म्यूनिसिपल ऐं टाउन सतह ते मसालती फोरम क़ाइमु करण जी तजवीज़। बिल जे मसवदे मूजिब मसालती फोरम जे तकरारनि जो हल ॻोल्हींदो ऐं मुक़ामी SHO UC चेयरमैन सां राब्ते में रहंदो।
5: अब मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि जिसने असेंबली में खड़े होकर रेजोल्यूशन पर वोटिंग के वक्त वॉकआउट करना मुनासिब समझा या जिस पार्टी ने असेंबली में आना मुनासिब नहीं समझा तो मैं उनको भी प्लीज पकड़ो जैसा समझूंगा। अगर पकड़ो कुछ नहीं बोल रहा तो उसका भी वही किरदार है जो MQM और PTI।
1: सूबनि बाबति पीर पघारी जो किरदार बि MQM वारो आहे। कंहिंजी ख़्वाहिश या मर्ज़ी ते रेफरेंडम नथो थिए सघे। आइन री रेफरेंडम बाबति वाज़ह आहे। पीपल्स पार्टी सिंध जे सदर निसार कोड़े चयो आहे त आमरण जो दौर गुज़री वियो। 2 सालनि बाद इलेक्शन थियणी आहे जंहिंखे सूबनि जो शौक़ु आहे इलेक्शन विड़े ठाहे।

ईरान ऐं अमरीका विच में चिकताण वधी वई। अमरीका पारां कचो तेल खणी वेंदड़ पंज ईरानी बहरी जहाज़नि खे तबाह करण ॾिना हुआ। सेंटकॉम ईरानी टैंकर्स ते हमलनि जूं वीडियोज़ बि जारी करे छॾियूं। सेंटकॉम मूजिबि ईरानी ऑयल टैंकर्स ख़िलाफ़ कार्रवाई पासरनि इनकलाब पारां अमरीकी वेड़नि खे निशानो बणाइण वारियुनि कोशिशनि बाद कई वई। अमरीकी परॾेही वज़ीर मार्को रूबियो चयो आहे त तेहरान अमरीकी बहरी वेड़नि खे ॿीहर निशानो बणाइण जी कोशिश कई त ईरान जा समूरा ऑयल टैंकर्स तबाह कया वेंदा। ऑयल टैंकर्स ते अमरीकी हमलनि बाद ईरान जो बि अमरीकी हथफनि ते जवाबी वार। उर्दन में अमरीकी अॾनि खे निशानो बणायो। अबने हॉर्मुस में बि 10 खां वधीक ॿेड़नि खे निशानो बणाइण जी दावा। रूसी मीडिया मूजिबि ईरानी फ़ौज उर्दन जे शहर अल रज़क में क़ाइम अमरीकी अॾे खे निशानो बणायो। अमरीकी बहरिया जे डिस्टायर खे बि निशानो बणायो वियो। पासर इनकलाब चयो आहे त उर्दन में अमरीकी अॾे ते कार्रवाई दौरान अमरीकी जहाज़नि ऐं हैंगर्स खे वॾो नुक़सान पहुतो आहे। उर्दन पारां ईरानी मिसाइल हमलनि जी तस्दीक कई वई। हीउ अस्पताल आहे या मज़ाक? HIV पकड़िजी वियो ऐं इस्तेमाल थियल सिरनि जूं ॿीहर इस्तेमाल कयूं वयूं। 14 ॿार फोत थिया आहिनि, पोइ बि FIR छो दाख़िल न थी आहे? सेनेट जी इंसानी हक़नि बाबति कमेटी पारां पिम्स थाने ते सख़्तु कावड़ जो इज़हार। चेयरपर्सन पिम्स इंसामिया खां पुछाणो कयो त मुअतली खां पोइ ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कहिड़ी कार्रवाई कई वई ऐं जांच कमेटी जी सिफारिशुनि ते केतिरो अमल कयो वियो। अवां खे अंदाज़ो आहे त हिकु माउ कहिड़ी तकलीफ़ मां गुज़रे थी? एमल वली ख़ान चयो त छा SHO खे अञा ताईं वाकिए जी ख़बर न आहे? केतिरनि ई केसनि में नामालूम माण्हुनि ख़िलाफ़ बि FIR दाख़िल थी वेंदी आहे, पोइ हिन केस में ईअं छो नथो कयो वञे? अवाम आख़िर कंहिं वटि वञे? आबिद शेर अली बि चयो त हिन मुल्क में न जज़ा आहे, न सज़ा ऐं न ई को निज़ाम। जेकॾहिं मां इस्लामाबाद जा अस्पताल बि संभाले नथा सघो त उहा ॿुॾी मरण जी ॻाल्हि आहे। सिक्योरिटी फोर्सिस जूं बलोचिस्तान जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में कार्रवायूं 11 दहशतगर्द मारिजी विया। ISPR मूजिबि सिक्योरिटी फोर्सिस खारान ऐं वाशक ज़िलनि में गुझे तलाते ऑपरेशन कयो। ऑपरेशन दौरान भारतीय सरपरस्ती में कम कंदड़ 11 दहशतगर्द मारिजी विया। खारान में कार्रवाई दौरान रोड बंदि करण जी कोशिश कंदड़ 8 दहशतगर्द मारिया विया। वाशक में ऑपरेशन दौरान फायरिंग जी ॾे वठि दौरान 10 दहशतगर्दनि खे जनम बेड़ो कयो वियो। ऑपरेशन दौरान मारिजी वियल दहशतगर्दनि वटां बारूदी हथियार ऐं बारूदी मवाद हथु कयो वियो। वज़ीर आज़म ऐं वफ़ाक़ी घरू वज़ीर पारां दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाई ते फोर्सिस खे भेटा पेश। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां

0: कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ साहब की तशद्दुद वारी केस में वधीक ब जवाबदार गिरफ़्तार। केस में गिरफ़्तार जवाबदारनि जो अघु पंज थी वियो। केस में अली गोहर शाह राष्ट्री जो पुट कोनेन शाह बि नामज़द। गिरफ़्तार जवाबदारनि में गुलशेर ताज मोहम्मद, गुलाम उमर, इमरान ऐं शौकत शामिल। पुलिस मूजिबि जवाबदार अली गोहर शाह जा मुलाज़िम आहिनि।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
3: सुनते रहो जीए एफएम 90.8।